0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते. 5:04 हो चुके हैं और बाहर अभी भी सन्नाटा है, लेकिन कई दिलों में आज का पूरा दिन पहले से ही शुरू हो चुका है. किसी के मन में नई उम्मीद, किसी के पास आज बड़ा सा काम और किसी को बस इतना करना है कि अपने घर वालों के चेहरे पर बस खुशी देखनी है. मैं हूँ आपके साथ पूनम. आइए RM2 रेडियो मस्ती पर पुराने सुनहरे गीतों के साथ इस सुबह को यादगार बनाते हैं, इंजॉय करते हैं. साथ में ही अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499-1294 पर. इंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग. मॉर्निंग मॉर्निंग बनाते हैं सुपर कूल.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:15 हो चुके हैं दोस्तों, और मैं सच ही कहती हूँ कि ये मुकेश साहब ने जो कहा है ना, सब कुछ सीखा हमने ना, सीखी होशियारी। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही दिल और इमोशंस के साथ चलते हैं, वो कभी इतनी होशियारी सीख ही नहीं पाते क्योंकि ज़िंदगी उनको बस ऐसे ही कोमल और सॉफ्ट बना के रखती है। तो इस समय जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, बेकरी में, डेयरी में, हॉस्पिटल या फैक्ट्री सिक्योरिटी ड्यूटी पे, भाई क्या बात है, आप सबको सलाम है हमारी तरफ से, पूरी MBC की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी। क्योंकि जब सारी दुनिया जाग रही होती है तब तक तो आपका काम शुरू भी हो चुका होता है, आधे आपने काम कर लिए होते हैं, डो बना लिया होता है और बस लग जाते हैं सबको परोसने के लिए या सबका ख्याल रखने के लिए। इंजॉय कीजिए अपने गाने, और अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो बिल्कुल मत भूलिएगा 5499124 पर। 24 आवर्स आप सबके साथ।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:26 हो चुके हैं दोस्तों, कहते कहते ही 27 हो गए. कोई बात नहीं भाई, ये तो टाइम है ऐसा जहाँ पर हमें बहुत सारे काम करने होते हैं. सुबह की जो भाग दौड़ होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और लेडीज़ कहें या जेंट्स कहें, सब अपने काम में एकदम से परफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है काम पे जाना है. तो बस ये जो काम है ना, यही हमेशा दौड़ाता है. और बाद में बात आती है कि खाने की भी, खाने जो होते हैं, जो आप खा रहे हैं उसी से एनर्जी मिलने वाली है, वरना तो ये बॉडी एक ऐसा ही हो जाता है जैसे अलमारी में सामान रखा हुआ है. अदरवाइज इसके अंदर जो एनर्जी है उसको बनाए रखने के लिए आपको प्यारा सा खाना है तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा. कुछ भी कॉर्नफ्लेक्स लो या कुछ भी हल्का फुल्का जो आपको लगता है. और सबसे अच्छी चीज़ होती है अगर मॉर्निंग में अगर आपको कुछ खाना है तो कल की कोई ब्रेड पड़ी है या रोटी पड़ी है, ब्राउन रोटी ना की मैदा वाली, तो वो भी बहुत अच्छी होती है, गट के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है. तो थोड़ा सा बटर लगाओ, गर्म गर्म चाय पियो, इलायची वाली पियो या अदरक वाली, क्योंकि ठंड है ना बाहर. पर कई लोग जो होते हैं सर्दियों में भी हरी वाली इलायची यूज़ करते हैं. अगर हो सके तो ब्लैक इलायची अगर आपको मिले, कार्डमम, तो बहुत ही अच्छी है. वो थोड़े से आपकी बॉडी को गर्म रखती है और आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है. चलिए भाई, ये आज हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको कोई नया काम करना है, जैसे कुछ अलमारी साफ करनी है या स्टोर रूम साफ करना है, गैराज साफ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पुराना काम जो कि आप रेगुलर करते हैं उसको स्किप करना पड़ेगा. एक दिन के लिए कर दीजिए जो कि आपको, मतलब आपको एक दिन एडजस्ट कर सको, और फिर वो नया काम करो, अलमारी लगाओ, सफाई करो. पर ये नहीं कि पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक काम काम काम काम काम, ये बिल्कुल मत करना. थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा अपने आप को पूरे दिन में. अपने मूड को चेंज करते रहो, गानों के साथ हमारे साथ जुड़े रहो, इंजॉय करो ये प्यारा सा गाना.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, लता मंगेशकर की आवाज़ और भूपिंदर सिंह जी की आवाज़ में आप ये गाना सुन रहे थे, नाम गुम जाएगा। सच्चाई है, हमारी जिस जिस जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बस ऐसे ही लगता है कि अब तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बट आपको दिमाग में ये बात रखनी नहीं है कि हमारी वैल्यू नहीं है, अंत तक मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऐसे रहना है जैसे कि आप ही की वैल्यू है। क्योंकि धूप जो है ना, आपको जो आपको दो कहते हैं ना कि जो टाइम आपका चला जाता है वो धूप आपको वापस दे देती है। तो मॉर्निंग में अगर जो अभी उठेंगे या उठ चुके हैं उनको सिर्फ हम इतना ही कहेंगे, थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठिएगा। जो चेहरे पे रिंकल्स आ गए हैं वो भी चले जाएंगे, जो एनर्जी चली गई है वो भी वापस आ जाएगी। और यही हेल्थ है, हेल्थ का सबसे बड़ा टिप है कि आपको थोड़ी देर धूप में ज़रूर रहना है। तो चलिए दो तीन प्यारे प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं। हमारे साथ इस समय जैशन जी जुड़े हुए हैं, टिम्बा, जेबुन, उमरान, दानो, अंगूठिया, आकाश, श्रवण, रामदेवर एंड मेविन सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग की ये प्यारे से गाने। और मॉर्निंग की कह रहे हैं कि हम जब ड्यूटी कर रहे होते हैं तब हमारे पास और कुछ चीज़ स्पेशल नहीं होती, ये गाने होते हैं और हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनका हम ख्याल दिल से रखते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। इन्जॉय कीजिए गाने और हमारे सारे पेशेंट्स का ध्यान रखिए। धीरज, अनुष, अर्विक, विदुषा, अश्विन, ज्योति एंड हर एक फैमिली इन्जॉय कर रही है इस प्रोग्राम को और नेक्स्ट गाना उन्हीं के लिए चलने वाला है। सुरेश शर्मा, साजदा जी जुड़े हुए हैं और सभी को गुड मॉर्निंग के साथ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब्दुल, सायरा बानो दोनों जुड़ी हुई हैं साथ में और नसरीन के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और कहती हैं कि भाई ख्याल रखना क्योंकि तुम फिलिंग स्टेशन में काम करती हो, हमें हमारा दिल और दिमाग हमेशा तुम्हारी तरफ रहता है। और मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर आपका मैसेज नसरीन के लिए है अब्दुल जी और सायरा बानो जी, तो सच में मुझे लगता है कि आपका दिल उसी की तरफ है। बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना ही चाहिए। एक ना एक दिन कहते हैं कि जब वापस मिलते हैं तो फिर वो बातें रह जाती हैं, अरे तुमने तो इतने दिनों से इतने सालों से मैसेज नहीं किया। तो कभी कभी भूले भटके कोई ऐसे दोस्त जिनको बहुत टाइम से मैसेज नहीं किया कर लिया कीजिए। टोनी जी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं सब अपना अपना ख्याल रखिए। बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी उन्होंने दिया है कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ललित जी साथ दे रहे हैं USA से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सुइया बिहारी जी किचन से जुड़ी हुई हैं साथ में और कह रही हैं कि मेरे भाई मनोज जी जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं और बहुत ही दिल से दिल के राजा हैं और सबका ख्याल रखते हैं, थैंक यू सो मच। राजन, मोनिका, पूनम, उमेश एंड आरशी सभी के लिए प्यारा सा गाना, आप सबके लिए एंजॉय कीजिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:47 हो चुके हैं दोस्तों. गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ पूनम. नई सुबह, नई किरण और नया अवसर आपके इंतजार में है. तो आइए मुस्कुराते हुए जानते हैं आज का आपका राशिफल. सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि.
1: सुबह से ही अच्छी ऊर्जा आपका साथ देगी. रुका हुआ काम आगे बढ़ने की संभावना है. किसी नई योजना की शुरुआत हो सकती है. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत कीजिए. लकी कलर है ऑरेंज. लकी नंबर है 7.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज मन को सुकून देने वाले पल मिलेंगे. परिवार या किसी का साथ खुशी दे सकता है. धैर्य से लिया गया फैसला लाभ देगा. दिन के अंत तक संतोष महसूस होगा. लकी कलर बनेगा ग्रीन. लकी नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी बातों का असर साफ दिखाई देगा. नई जानकारी आपके काम आ सकती है. किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात हो सकती है. हर पल का आनंद उठाते रहिए. लकी कलर है येलो. लकी नंबर है 5.
2: कैंसर

0: कर्क राशि। घर का माहौल आपकी नई ऊर्जा देगा, पुरानी चिंता धीरे धीरे दूर होगी, अपनों का साथ मन को खुश करेगा। आज दिल से हर पल को जिए। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज आपकी मौजूदगी सबका ध्यान खींचेगी, काम में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है, नई जिम्मेदारियां आपके पक्ष में रहेंगी, आत्मविश्वास बनाए रखिए। लकी कलर है गोल्डन, लकी नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज अपने दिन को आराम से संभालिए, जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा, छोटी सफलता भी बड़ी खुशी दे सकती है, मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 4।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: रिश्तों में अपनापन और बढ़ेगा, किसी अच्छी खबर से मन दिल खिल उठेगा, नई उम्मीद आपका दिन को आगे बढ़ाएगी, हंसी बांटते रहिए, दिन की शुरुआत अच्छे से मूड से कीजिए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 9।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: मेहनत का असर दिखाई देने लगा है, किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम आज आपको मिल सकता है, धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, दिन उम्मीद से बेहतर रहेगा। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी, यात्रा या नई योजना का कुछ प्लानिंग आप कर सकते हैं, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए। लकी कलर है बैंगनी, लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: काम में आपकी लगन सबको प्रभावित करेगी, अधूरे काम पूरे होने के संकेत हैं, सोच समझ कर लिया गया फैसला सही रहेगा, शाम तक राहत महसूस होगी। लकी कलर है बेज, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: नई सोच आपको नई पहचान दिला सकती है, दोस्तों से अच्छी बातचीत होगी, किसी पुराने विचार पर जो आप काम कर रहे थे वो काम शुरू हो चुका है, उसे करते रहिए, दिन उत्साह से भरपूर रहेगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज दिल खुश रहेगा और मन शांत रहेगा, किसी अपने का प्यार आपको हौसला दे सकता है, छोटी छोटी खुशियां दिन को खास बना देंगी, हर पल को मुस्कुराते हुए जिए और अपना ये लकी कलर है फिरोजी, लकी नंबर है 12। तो ये था आज का आपका राशिफल, एंजॉय करें अपने गाने।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. सभी को हमारा नमस्कार. FCC में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की गई. प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे शांत हैं. उन्होंने पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उनके वकील राव गुलबुल ने पूछताछ की प्रक्रिया पर संतोष जताया और कहा कि जांच निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से हुई. MMG तेल ठेका मामले में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद के साथ भी पूछताछ की गई, जो 7 घंटे तक चली. FCC में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई. STC के 30 बिलियन रुपए के अनुबंध पर सवाल किया गया. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जांच में सहयोग का भरोसा जताया. मनीष गोविंद का दावा है कि उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार हो रहा है. आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का अहम चरण शुरू हो रहा है. 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा. इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं और आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी. और विदेश में उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और आसमान में युद्धक विमान उड़ते दिखे गए हैं. ये ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं. एयरबिल में अमरीकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके सुने गए हैं. और अब मौसम संबंधी जानकारियाँ. हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं. उत्तर पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ेगा. आज सुबह उत्तर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी. दोपहर बाद को दक्षिण पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी. अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा. न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा. दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है. और दिन के दौरान पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में सुधार आने लगेगा. सूर्योदय 6:41 पर और शाम 5:51 पर सूरज ढल जाएगा. ये थी अब तक की खबरें. पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. धन्यवाद. नमस्कार और शुभ दिन.
3: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
3: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:18 हो चुके हैं और हमारा सेकंड आवर स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट में भी क्या 20 मिनट तो वैसे ही निकल गए. चलो ये गाने तो बहुत मस्त होते हैं बट उसके साथ में अगर आपने कभी रियलाइज़ किया हो या ध्यान दिया हो कि सुबह के समय सड़कें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे भरती हैं और हर गाड़ी के अंदर एक अलग कहानी चल रही होती है. कोई अपना

0: सपना लेके चल रहा होता है, कोई जिम्मेदारियां पूरे घर की लेके चल रहा होता है और कोई नई शुरुआत कर रहा होता है किसी से मिलने की कि आज मुझे ये मीटिंग करनी है, ये एक्साइटमेंट उनके दिल में और उनकी बॉडी में होता है। तो अगर आपके भी ऐसे ही आज कुछ प्लान्स हैं तो बस आगे चलते रहिए, इंजॉय कीजिए। साथ में हम ले लेते हैं दो तीन प्यारे से मैसेजेस। आज बर्थडे है सावन पुराहो जी का और बेस्ट विशेज भाई सोना, भाभी बिंदिया फ्रॉम सानी एंड सयाना एंड कालू फैमिली की तरफ से अमृता जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं, थैंक यू सो मच। देवी जी भी जुड़ी हुई हैं साथ में और इंजॉय कर रही हैं, थैंक यू सो मच। किशन रघुनाथ जी वाइफ और अपनी प्यारी डॉटर्स जिया और रिया के लिए प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं, बिल्कुल चलाने वाले हैं। बाबू से धनवेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ, संजीव रेखा निशा देवदोस फैमिली सभी जुड़े हुए हैं साथ में, ललिता जीतन जी भी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। और आज एक कपल है जिनकी वेडिंग सेकेंड एनिवर्सरी है और बेस्ट विशेज है फ्रॉम मामा मनीता निशा अश्विनी कुणाल एंड यश की तरफ से, बट आपने उन कपल का नाम नहीं बताया, बट कोई बात नहीं, आप सबके लिए तरफ से हम उन्हें विश करते हैं। हम हमेशा यही कहेंगे, हमेशा एक प्यारे से जुड़े के जैसे रहिए, इंजॉय कीजिए, ब्यूटीफुल लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, हंसते खेलते गुजर जाएगी और बस इंजॉय कीजिए अपने गानों को। मैं ये प्यारा सा गाना चलाना चाहती हूँ उन सभी के लिए जिनके दिल में अभी भी थोड़ी सी ऐसी एहसास जुड़े हुए हैं कि भाई ये प्यार और मोहब्बत ऐसे ही रहनी चाहिए। चलिए इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: सावन जी आपके लिए और राकेश जी आपके बच्चों और आपकी वाइफ की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, एंजॉय कीजिए ये गाना आपके लिए।
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: सभी को हमारा नमस्कार। सुबह के ठीक 6:30 हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। एफसीसी में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे शांत हैं। उन्होंने पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनके वकील राव गुलबुल ने पूछताछ की प्रक्रिया पर संतोष जताया और कहा कि जांच निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से हुई। एमएमजी तेल ठेका मामले में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद से 7 घंटे तक पूछताछ की गई। एफसीसी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। एसटीसी के 30 बिलियन रुपए के अनुबंध पर सवाल किया गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जांच में सहयोग का भरोसा जताया। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार हो रहा है। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का अहम चरण शुरू हो रहा है। 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा। इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं और आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा होगी। और विदेश में उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके सुने गए। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अंडर वार्निंग पूछताछ की। ये पूछताछ साल 2023-2024 के लिए मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को लगभग 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम आपूर्ति अनुबंध दिए जाने की जांच के सिलसिले में की गई। आज तड़के करीब 2 बजे बाहर निकलने के बाद एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे पूरी तरह शांत और आश्वस्त हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पूछताछ के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की और केवल इतना कहा कि जांच अभी जारी है। उनको सुनते हैं। पूछताछ समाप्त होने के बाद वकील रऊफ गुलबुल ने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके मुवक्किल से किस तरह पूछताछ की गई। उन्होंने जांच की पूरी प्रक्रिया की भी सराहना की। उनको सुनते हैं।
1: L'exercice me satisfait. Nous faire face avec Banan Kefea, je me pose, Monsieur Jagnat, beaucoup de questions. Nous faisons une réponse, nous satisfait avec le déroulement de l'enquête. Mais à ce stade, parce que l'enquête n'a pas encore fini. Il n'est pas prudent pour Monsieur Jagnat un commentaire. À la fin, quand on finit, l'on va décider, puis vous dire à la presse, mais il y a une enquête qui continue.
0: कल पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद ने रेजवी स्थित फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के दफ्तर में करीब 7 घंटे बिताए। अंडर वार्निंग पूछताछ के तहत मौजूदा एमएसएम के महासचिव से स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा साल 2023-2024 के लिए सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का ठेका दिए जाने के मामले में पूछताछ की गई। इस ठेके की कीमत लगभग 30 बिलियन रुपये आंकी गई है। रात के करीब 8 बजे रिजवी ट्रायंगल से बाहर निकलने के बाद मनीष गोविंद ने कहा कि उन्होंने

0: ने जांच अधिकारियों को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और एसटीसी के बीच हुए कानूनी मत और पत्राचार के बारे में पूरी जानकारी दी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये भी महसूस होता है कि उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको सुनते हैं।
1: Ofingay a une convocation qui dit à moi, you are kindly requested to attend. C'est signé par M. Alior. Donc, nous fin collaborer, nous fin vin cet après-midi à la FCC. Nous fin répondre à nombreuses questions de ban enquêteurs. Ce qui m'ont capable de dire, eux, nous final dans beaucoup de détails concernant legal advice qui t'y donné, échange qui finit, non, avec nos bureaux à l'époque comme outil attorney general. L'enquête, bien sûr, pour continuer, mes avocats et moi, nous, à la disposition, subis à nous, fait à nous connaître et nous pouvons venir. Ça veut dire depuis avril 2025, nous avons donné un statement, mais qui fait attendre à tout à coup, en quatrième vitesse, pour convoquer leader MSM, secrétaire général MSM et ministre GAN. Ça qui nous dénonçait, l'EPEP peut trouver qu'il peut servir un appareil d'État pour faire une persécution, pour faire une vendetta.
0: दूसरी ओर मनीष गोबिंद ने कहा कि उन्हें अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर उन पर किस बात का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ये ठेका दिए जाने की प्रक्रिया में उनकी किसी भी समय कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी दोहराया कि उन्हें स्टेट लॉ ऑफिस के अधिकारियों का पूरा भरोसा है।
1: Moi, personnellement, je n'ai pas aucun involvement, je n'ai aucune participation dans le bidding process, dans le award.
2: Mon bureau, c'est où ça?
1: Non, mon bureau, c'est pas moi qui signe advice. Et n'a pas une personne responsable qui fait aller. Mon Redjaou, à aucun moment, ni moi participé dans bidding, dans award, dans quoi que ce soit en tant que la décision qui tu fais par le public body concerné, c'est-à-dire la STC. Mon père n'a aucun doute sur l'intégrité des bénéficiaires du State Law Office.
0: 2026-2027 के बजट को लागू करने का चरण आज से शुरू हो रहा है। दिन के 11:30 बजे संसद के सदस्य राष्ट्रसभा में एकत्र होंगे और फाइनेंस बिल के साथ साथ दो महत्वपूर्ण कानूनों की समीक्षा करेंगे। ज्यादा जानकारी तीना बुन्ना के साथ।
3: दरअसल फाइनेंस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसमें नई स्टेट एज पेंशन व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसके तहत पेंशन की संदर्भ आयु यानी रेफरेंस एज धीरे धीरे 61 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। हालांकि 60 वर्ष की उम्र से ही पेंशन का दावा किया जा सकेगा, लेकिन संदर्भ आयु से पहले हर महीने के लिए पेंशन राशि में 0.5% की कटौती होगी। इस विधेयक में आमदनी पर टैक्स की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। टैक्स योग्य आय के पहले 5,00,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके बाद 10%, 20% और 35% की दरें लागू होंगी। साथ ही जनवरी 2027 से सामान्य बीमा प्रीमियम पर 5% टैक्स भी लगाया जाएगा। फाइनेंस बिल में VAT सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, ऑनलाइन गेमिंग, संपत्ति कर और सामाजिक सहायता से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की जांच और निगरानी की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी और सरकारी कर्ज तथा सार्वजनिक वित्त की निगरानी भी और मजबूत की जाएगी।
0: राष्ट्रसभा में आज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी विचार किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिल है जिसे 2026-2027 के बजट में घोषित कई कदमों को लागू करने के लिए तैयार किया गया है। इस बिल में मौजूदा 58 कानूनों में बदलाव लाने या उन्हें रद्द करने का प्रस्ताव है। इनमें से कुछ बदलाव मॉरिशस के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे, खासकर मजदूरों के अधिकारों, पब्लिक हॉलीडेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बैंकिंग गोपनीयता से जुड़े मामलों में। अन्य प्रावधान देश के कामकाज और सार्वजनिक कॉन्ट्रैक्ट्स देने के तरीके से संबंधित हैं। ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके कई प्रावधानों पर आज संसद में होने वाली बहस में खास तौर पर चर्चा होने की उम्मीद है।
3: सबसे अहम प्रस्तावों में वर्कर्स राइट्स एक्ट में संशोधन शामिल है। इसके तहत जिन महिला कर्मचारियों को गंभीर मासिक मेंस्ट्रुअल संबंधी तकलीफों के कारण काम करना संभव नहीं होगा, उन्हें हर महीने एक दिन का मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगा। वहीं मातृत्व अवकाश को भी यानी मैटरनिटी

0: की लीव को भी बढ़ाकर पूरे वेतन के साथ 26 सप्ताह किया जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर आधे वेतन के साथ अतिरिक्त 26 सप्ताह की छुट्टी भी ली जा सकेगी। आम लोगों को सीधे प्रभावित करने वाला एक और बदलाव पब्लिक हॉलीडेज एक्ट में किया जाएगा। अगर कोई सार्वजनिक अवकाश रविवार को पड़ता है तो उसके अगले दिन यानी सोमवार को भी सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा। इससे ऐसे मामलों में लोगों को सोमवार को छुट्टी का लाभ मिल सकेगा। बैंकिंग एक्ट में भी संशोधन प्रस्तावित है। इसके तहत फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट के तहत जारी आदेश या नोटिस मिलने पर बैंक अपने ग्राहकों से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कुछ प्रावधानों का दायरा बढ़ाकर सभी वित्तीय अपराधों तक किया जाएगा ताकि जाँच और प्रभावी हो सके। क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट में भी बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तहत पब्लिक क्लिनिकल ट्रायल यूनिट सरकारी अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल का समन्वय करेगी। ये इकाई बीमारियों का रजिस्टर तैयार करेगी और ऐसे मरीजों की पहचान करेगी जो अधिकृत क्लिनिकल ट्रायल में भाग ले सकते हैं। हालांकि मरीज की स्पष्ट सहमति, गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अंत में पब्लिक प्रोक्यूमेंट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के तहत कुछ विशेष सेवाओं के लिए सरकारी संस्थाएं विदेश में रहने वाले किसी मॉरिशन विशेषज्ञ की सेवाएं सामान्य टेंडर प्रक्रिया के बिना सीधे ले सकेंगी।
1: इन 5 कदमों के अलावा ये विधेयक कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। रोजगार, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, आप्रवासन, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि और कचरों का संचालन। ये बिल बजट के कदमों को कानूनी बल प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन साथ ही ये श्रमिकों के अधिकारों, डेटा संरक्षण, पारदर्शिता और सार्वजनिक संस्थानों के अधिकारों से संबंधित बहसों को भी बढ़ावा देने की उम्मीद है। राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान 23 सवालों के जवाब देंगे। चर्चा के मुख्य विषयों में पब्लिक फाइनेंस, जेल की सुरक्षा और खरीद शक्ति शामिल होंगे। सांसद खास तौर पर BAI ग्रुप की संपत्ति, बिक्री के लेन देन और फंड के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। साथ ही गैर मंत्री सांसदों द्वारा सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की जाएगी। महंगाई, बढ़ती कीमतें, डॉलर और रुपए के बीच अंतर, FCC जांच और ऑडिट रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा, एयर मॉरिशस और एयरपोर्ट होल्डिंग्स का भविष्य और सार्वजनिक कर्ज भी उन विषयों में शामिल होंगे जिन पर बहस होगी। इस सोमवार को पोर्टलुइस में हुई आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड एडवाइजरी कमेटी की 17वीं बैठक में बफर जोन में मौजूद कई संपत्ति मालिकों और स्थानीय निवासियों ने इमारत से जुड़े नियमों को लेकर चिंता जताई। पुरानी पोर्टलुइस में अधूरे पड़े निर्माण स्थलों, तराशे हुए पत्थरों की चोरी और जर्जर फुटपाथ उनकी मुख्य शिकायतें थीं। संस्था के निदेशक वेद प्रकाश बंधन के अनुसार यूनेस्को की गाइडलाइंस का पालन करने का मतलब प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को रोकना नहीं है। वे विरासत से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में किए गए चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इमारत के नवीनीकरण का उदाहरण देते हैं। उन्होंने सेंट्रल पोर्टलुइस की कई ऐतिहासिक इमारतों के संचालन में तालमेल बिठाने के लिए एक नए 5 वर्षीय मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा की, जिसके बाद यूनेस्को को सौंपा जाएगा। ये दस्तावेज भविष्य के आप्रवासी घाट कल्चरल हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पुलिस हिरासत में इकबाल तूफानी की मौत के 10 साल से ज्यादा समय बाद भी ये मामला सबूत इकट्ठा करने और हिरासत में लिए गए लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी 3 पुलिस अधिकारियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। IPCC के नए अध्यक्ष सतीश फुगू के अनुसार तब से प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों और कानून लागू करने वाले अधिकारियों दोनों की सुरक्षा के लिए और सुधारों की जरूरत है। ज्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
2: Il a fêté, il a fait une barre de connaître parce qu'il a coupé Dieu ça. असफल जो भी जो कुंसा पेना

0: मैं पिनाफी के मैं
1: 2015 से 2025 तक 10 सालों की अनिश्चितता प्रतीक्षा और इकबाल तूफानी के परिवार के लिए तकलीफ। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद 2015 में वो चल बसा था। 3 पुलिस अफसरों पर उत्पीड़न की कार्रवाई चलाई गई थी और 2020 में उन्हें रिहा कर दिया गया था। 5 साल बाद अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने DPP की अपील रद्द करते हुए उनकी रिहाई बरकरार रखी। इकबाल तूफानी की विधवा के लिए ये फैसला स्वीकारना कठिन था, जो अभी भी अपने शौहर के गुजरने की परिस्थिति पर जवाब पाने के इंतजार में। ये मामला 2018 में इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन की स्थापना से पहले का है। इस कमीशन का गठन पुलिस के खिलाफ शिकायतों और पुलिस हिरासत में हुई मौत की शिकायतों पर जांच के लिए किया गया है। इसके नए अध्यक्ष सतीश फोगो के लिए तूफानी के मामले से सीख लेनी चाहिए। इसे जुडिशियल प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे 10 साल लगे हैं। ये बहुत लंबा समय है। ये प्रणाली की समस्या है, इसका तत्काल कोई हल नहीं। ये केवल इकबाल तूफानी के मामले से संबंधित नहीं, ये एक आम समस्या है जिस पर चिंतन करना चाहिए। कई सवाल करनी चाहिए, मेडिकल सबूत भी थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सोचता हूँ शुरुआत के लिए पुलिस के स्तर पर पाई जाने वाली समस्या का हल निकालना चाहिए।
2: Sans pour jugement, mon pensée n'a beaucoup questions nous a posées. Et encore une fois, c'est au niveau de l'enquête. Un cas, pour moi, quand Moguet, par exemple, les données et ben l'évidence qui tient, medical evidence et tout ça.
1: तब से कई कदम कैदियों की रक्षा मजबूत करने के लिए लाए गए। हिरासत केंद्रों में निगरानी कैमरे भी उठाए गए।
2: C'était en 2015, qui ne fait beaucoup bruit, c'était avant IPCC.
1: सतीश फोगू ने कहा, 2015 में बहुत आवाजें उठाई गई। IPCC की स्थापना से पूर्व पुलिस और प्रणाली के स्तर पर बहुत बदलाव लाए गए हैं, जैसा कि निगरानी कैमरे डिटेंशन सेंटर में लाए गए हैं, जिससे कैदी के साथ साथ अफसर की भी रक्षा हो सके। IPCC के नए अध्यक्ष का मकसद है परिवारों को लंबे समय तक बिना कोई जवाब के रखने से बचना और सभी संबद्ध लोगों के लिए उचित जांच को भी सुनिश्चित करना।
3: विदेशी खबरों में, पश्चिम एशिया में लगभग 5 महीनों से जारी भीषण संघर्ष अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच इराक और उसके आसपास के इलाकों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अचानक काफी बढ़ गया है। उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और आसमान में युद्धक विमान उड़ते देखे गए हैं। ये ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके सुने गए। मौसम संबंधी जानकारियां, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। उत्तर पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ेगा। आज सुबह उत्तर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में पश्चिम तथा दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। दिन के दौरान पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में सुधार आने लगेगा। आज सुबह 6:41 पर सूरज निकला है और शाम 5:51 पर सूरज ढल जाएगा। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। FCC में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि वे शांत हैं। उन्होंने पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनके वकील रऊफ गुलबुल ने पूछताछ की प्रक्रिया पर संतोष जताया और कहा कि जांच निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से हुई। MMG तेल ठेके

0: का मामले में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद से 7 घंटे तक पूछताछ की गई। एफसीसी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। एसटीसी के 30 बिलियन रुपए के अनुबंध पर सवाल किया गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जांच में सहयोग का भरोसा जताया। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार हो रहा है। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का अहम चरण शुरू हो रहा है। 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा। इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं। आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा होगी। और उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके सुने गए हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें काडिया का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: एरिक आडुलेन मिडलैंड्स में 45 साल के 45-year-old के श्री उत्तम बुखोरी, जो शैलेश से ज़्यादा जाने जाते थे और टैक्सी ड्राइवर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर एरिक आडुलेन मिडलैंड्स से उठाकर माकेशानी रूजवेल्ट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। नंबर 22 गोहा इसाक स्ट्रीट पोर्टविस में 31 साल के 31-year-old के जनाब मोहम्मद जमील बैरागी, जो जमील से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके वालिद इम्तियाज बैरागी के घर नंबर 22 गोहा इसाक स्ट्रीट पोर्टविस से उठाकर रिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। विरासोमी रोड कॉटेज में 74 साल के 74-year-old की श्री बिसुनदेव प्रियतम, जो लोलो से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनके बेटे सनी प्रियतम के घर विरासोमी रोड कॉटेज से उठाकर कॉटेज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बेगे स्ट्रीट हॉलीवुड वाकवा में 37 साल के 37-year-old की श्री राजीव सौजिया, जो राजीव से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी मां धनवंती सौजिया के घर बेगे स्ट्रीट हॉलीवुड वाकवा से उठाकर थ्वामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मुसलमान सुहावन कारोलिन बेलेरिविया सेश में 80 साल के 80-year-old के श्री नारायण जीतन, जो केवर से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले काशी पोर्टविस रहते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर मौसलमों सुहावन कारोलिन बेलेर सेश से उठाकर पिचिबुआ कारोलिन बेलेर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड क्रेवक्योर में 83 साल के 83-year-old की श्री चंदर कालीचरण, जो लाला से ज़्यादा जाने जाते थे और जो मोका अस्पताल के डॉक्टर हिमराज कालीचरण के पिता थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे यजराज कालीचरण के घर रॉयल रोड क्रेवक्योर से उठाकर क्रेवक्योर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 75 शुमेला सूस काथोबोन में 81 साल के 81-year-old के श्री लुमन सिंह ओबिलक, जो भूप से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे ओबिलक उत्तम सिंह के घर नंबर 75 शुमेला सूस काथोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 90 साल के 90-year-old के श्री हरि प्रसाद चमन, जो प्रसाद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर पीटों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। इंटरनेशनल स्ट्रीट रिविया जुरांपा में 78 साल की

0: 28-year-old के श्री जीवन पिगु, जो सत्यदेव से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके घर इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवियर जुगांपा से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 29 कनाल बैथर्स्ट सेंट क्वा में 64 साल की 64-year-old की श्रीमती देवती जयगोपाल, पैदाश नाम शिवनारायण और जो अंबिका से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति दीपक जयगोपाल के घर नंबर 29 कनाल बैथर्स्ट सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। पिजित काबान कोडमास्क पावी में 69 साल के 69-year-old के श्री कोमल दत्त मंगर, जो लालदेव से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर पिचित काबान कोडमास्क पावे से उठाकर मेजिन कोडमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:00 PM। जोसेफ फ्रांसवा डुबेन स्ट्रीट वाली डे प्रेत्र में 76 साल के 76-year-old के श्री दयाराम गुचन, जो ज्ञानदत्त से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर बाद के 3 बजे उनकी पत्नी कलावती गुरचन के घर जोसेफ फ्रांसवा डुबेन स्ट्रीट वाले दे प्रेत्र से उठाकर बुआ मौशों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। इंग्लैंड में 87 साल की 87-year-old की श्रीमती तारामती हीरू, पैदाश नाम अंबाजी और जो मनका से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे वुकल एवेन्यू हसलफीड हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड के श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तुलसी लेन यूनियन पार्क में 46 साल के 46-year-old के श्री कविराज तुलसी, जो विक्रम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी मां सुकवंती तुलसी के घर तुलसी लेन यूनियन पार्क से उठाकर माकिशानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

58 मिनट हो चुके हैं और आज मेरी सुबह के साथ वे जो हिस्सा बने हैं आप सब, उन आप सब का धन्यवाद। और मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है विदिता का मॉर्निंग बीट में। और मेरे को दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।

0: नॉमिनेट हुई हैं, कैसी हैं आप? भाई मंडे का जो डर होता है वो मन से निकल जाता है, तो ट्यूसडे के बाद हम गिनते रहते हैं अपने दिन कि भाई बस और एक दिन और एक दिन और एक दिन, ऐसे करते करते पूरा वीक निकल ही जाता है जब तक कि आप फ्राइडे तक पहुंच नहीं जाते और आपको वो वीकेंड वाली फीलिंग नहीं आती। कैसे हो आप? चलो यहाँ पर सफ़र शुरू होता है हमारा आपका। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड यू आर वेरी वेरी वेरी वेरी हैप्पी। चलो इसी के साथ अभी अब हम शुरुआत भी करेंगे, तो हम करेंगे एक गेम के साथ। आपको पता ही है कि यहाँ पर हम आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक गुडी बैग है और ये गुडी बैग अगर आपको जीतना है ये फॉर्मलिन की तरफ से आपको मिल सकता है। करना क्या है, बस आपको हमारा एक प्रोमो सुनना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो हमारा टैगलाइन है उसको सुनना है और फिर उसके बाद आपको हमें बताना है कि वो तीन टैगलाइंस कौन से होंगे। तो ये सब होने वाला है थोड़ी ही देर में, आप हमारे साथ रहिएगा, जुड़ते रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा जहां से भी दे रहे हैं आप हमारा साथ।
1: RM2 Radio Masti, feel the Masti.

0: Comme dit Madame Sheila, et Formelaine, nous gagnons beaucoup plus.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: All right, मैंने इशारा आपको पहले कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं एक प्रोमो चलाने वाली हूं. फॉर्मलाइन की तरफ से आपको इनाम मिल सकता है अगर आपने वो तीन जो टैगलाइन है मेन आपने उसको पकड़ लिया. यानी कि मैं अगर आपको सही मायने में बोलूं तो ये जो हमारी टैगलाइंस है इसमें इसका मैं अनुवाद करती हूं तो होता है और आसान और तैयारी और स्वादिष्ट. तो आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, आपको ऑन एयर

0: ये बोलना पड़ेगा कि ये तीन जो टैगलाइंस है वो कौन सी है। जितने पर आपको फार्मलैंड की तरफ से मिल सकता है एक गुडी बैग जिसमें आपको फार्मलैंड फैमिली सीरियल, फार्मलैंड मिल्क पाउडर और एक एक्सक्लूसिव मग, एक टोट बैग भी मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं अभी जो फार्मलैंड है इसमें अभी बहुत सारी वैरायटीज आ गए हैं, जैसे फार्मलैंड मिल्क के बाद अब आता है फार्मलैंड फैमिली सीरियल एंड फार्मलैंड हॉट चॉकलेट। तो बस आपको करना क्या है, पकड़ना है वो तीन टैगलाइन और मुझे कॉल करना है, मुझे बताना है कि वो तीन टैगलाइन कौन से है। Dhyan se suniyega.
1: L'habitude qui jamais pour songer. Mouti time avec Farmland.
2: Ah ben oui, madame Sheila. Ou toujours bien smart.
1: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
2: Mmh, ou fais-moi faire.
1: Aster avec Farmland Hot Chocolate, la vie encore plus tamame. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
2: Aster avec Farmland, nous gagnons encore beaucoup plus.
1: Farmland, ça même nous. Smart choice.

0: ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने आपसे यही कहा था कि आपको सुनना है हमारा जो प्रोमो है, उसमें आपको तीन जो टैगलाइंस हैं वो पकड़ने थे. और यहां पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बैठकर सुनते हैं कि भाई अभी हमारी बारी आएगी, अभी हम कॉल करेंगे. बहुत बहुत बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, बहुत बहुत बहुत सारे कॉल्स आए. थैंक यू सो मच गाइज. एंड चलिए इसी के साथ अभी समय हो गया है कि हम मिलें उनसे और बात करें, जाने कि कौन है हमारे साथ. हेलो, गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग
0: जी, अपना नाम बताएंगे आप?
1: मैं देवीना हूँ, पिछड़ा से.
0: जी देवीना जी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ.
0: आपने हमारा प्रोमो अच्छे से सुना.
1: हाँ.
0: और आपको पता है कि वो तीन टैगलाइंस कौन से हैं?
1: जी हाँ,
0: बताइए.
1: ओको प्लस तमाम, ओको प्लस सैम, ओको प्लस गुम.
0: तमाम तो है लेकिन इसमें प्रिपरेशन भी था.
1: ओके.
0: आपने मुझे तीन चीज़ें नहीं, चार चीज़ें बताई थी. आप शायद उन्हें आकर भूल गई, लेकिन थैंक यू सो मच. और जितने भी लोग हमें कॉल करते हैं उनके जवाब हम लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा लकी ड्रॉ होता है. तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और आसान और तैयारी और स्वादिष्ट मैं बोलती रहती हूँ, तो आपने अच्छा पकड़ा है यहाँ पर. देवीना जी, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया. और यहाँ मैं आपको बताऊँ, आपको मिल रहा है फार्मलैंड की तरफ से एक गुडी बैग, जिसमें आपको मिल रहा है फार्मलैंड फैमिली सीरियल, फार्मलैंड मिल्क पाउडर 1 kg, फार्मलैंड मिल्क पाउडर 500 grams, 1 एक्सक्लूसिव मार्क. और एक टोट बैग आपको मिल रहा है, जो आपको अपने आईडी के साथ आकर यहाँ एमबीसी कलेक्ट करना पड़ेगा सुबह 9 सपहर के 3 बजे के बीच में. ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो आपको कॉल करेगी और फिर उसके बाद वो आपको सारी डिटेल्स लेंगी आपसे. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. तो ये थी देवीना पिछड़ाफरी से. चलिए अभी आपकी बारी है, अगर आप किसी को यहाँ पर खुश करना चाहते हैं, बर्थडे विश भूल गए आप?

0: चलिए भाई हम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के उनसे मिलने जाते हैं जिनका आज स्पेशल डे है.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: And yes, now it's time to welcome Savan. Savan ko aane do. Hello, Savan.
3: Hello.
0: Good morning, Savan.
3: Good morning.
0: This is Savan from Goodlands, right?
3: Yes.
0: और मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है हमने आपको क्यों कॉल किया.
3: Yes, it's my birthday. Thank you.
4: Happy birthday to you from Radio Musti.
0: So Radio Musti team ki taraf se wishing you a very happy birthday, Mr. Savan.
3: Thank you once again.
0: All right. Mm-hmm. So aapka kaam abhi chal raha hai ghar pe because aap apne khud ke liye kaam karte ho, right?
3: Yes.
0: To aaj ka plan kya hai?
3: Aaj off. आज काम नहीं है.
0: वाओ, क्योंकि कुछ लोग जब अपने लिए काम करते हैं ना तो कहते हैं कि भाई घर पे ही है, अपना तो काम है, काम करो पार्टी करो क्या फर्क पड़ता है. सो अच्छी बात है दैट आपने सोचा कि आज नो काम
3: बच्चों के साथ.
0: अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना. चलो बीवी भी खुश हो जाएगी. बीवी के साथ बच्चों के साथ बाहर जाओ, एंजॉय करो,
3: घूमने जाना है.
0: और भूलना नहीं एमबीसी आ जाना अपने आईडी कार्ड के साथ. यहाँ पर आपको लूलू हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है. उस वाउचर को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर आज या तो फिर कल. और ये तभी होगा जब आप अपने आईडी कार्ड के साथ यहाँ पर आओगे. ठीक है, यू हैव टू डेज, आज नहीं तो कल. अब आज छुट्टी मार ही ली है तो आ जाना अपना वाउचर ले जाने. ठीक है. सो हैप्पी बर्थडे.
3: ओके, थैंक यू वंस अगेन.
0: थैंक यू सो मच. तो ये थे हमारे साथ सावन पुराहू जो कि थे फ्रॉम गुडलैंड्स और आज है उनका हैप्पी बर्थडे. आप भी अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हो, आपको भी हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे. एंड मैं इनको बता दूं कि हम रोज लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से किसी ना किसी का दिन स्पेशल बनाते हैं, उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं. ऐसे ही अभी तो क्या है कि मैंने सरप्राइज देना बंद कर दिया कि मुझे झटके लगने लगे हैं. तो थैंक यू सो मच. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. वैसे ये जो सरप्राइज था सनी और स्वयं की तरफ से था स्पेशली. और क्या करें, उनके लिए गाना चला दे.
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
2: Radio.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Yes, my dear friends, thank you so much once again. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए a very very good morning. Tuesday 28th of July. Okay, so यहाँ पर आज का जो दिन है बहुत ही प्यारा है. Morning में जब आप उठते हो, सर्दी का मौसम होता है, थोड़ी सर्दी गर्म गर्म चाय मम्मी बनाती है.

0: उसमें थोड़ी सी अदरक होती है, कुछ लोगों को इलायची वाली पसंद है, कुछ लोगों को दालचीनी वाली पसंद है। आ हा हा हा, सोचते ही सोचते मन को ठंडक पड़ गई भाई, हमारा कलेजा ठंडा हो गया। चलो इसी के साथ गरम गरम चाय आप पियो, कलेजा ठंडा हमारा होता है। और बता दूं ये भी कि जो लोग चाय नहीं पीते मॉर्निंग में, जूस पीते हैं, गरम पानी पीते हैं, हल्दी वाला पानी पीते हैं, घी वाला पानी पीते हैं, बहुत लोग हैं भाई जो मॉर्निंग में अपने ये सारे रिचुअल्स करते हैं, तो रेडी हो जाइए, थोड़ी देर में हम आपको भगाने वाले हैं क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज के साथ अरविंद आ रहे हैं थोड़ी देर में।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2 Radio.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And yes, friends, चलिए यहाँ पर आ गए हमारे दोस्त अरविंद. भाग भाग के भाग भगा के इतने चक्कर काटे हमने, फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है अब स्पोर्ट्स न्यूज लेकर आ गए हैं. तो अभी उनसे मुलाकात करते हैं. बड़े स्माइल कर रहे हो, क्या बात है. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. ग्लासगो स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जारी है. मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया आगे है 26 गोल्ड मेडल, 26 गोल्ड मेडल टोटल 59. इंग्लैंड के पास है 8 गोल्ड मेडल टोटल 32. कनाडा 7, नाइजीरिया 6, स्कॉटलैंड 5. टीम इंडिया के पास 2 गोल्ड मेडल है टोटल 10. आज 27 गोल्ड मेडल जीते जाएंगे. एथलेटिक्स में 6 फाइनल है, इनमें मेंस एंड वुमेन्स 100 मीटर्स के फाइनल भी है. मॉरिशस से राशेल क्लॉपफेनस्टाइन 800 मीटर के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई हैं. 110 मीटर हर्डल में जेरेमी लारारोडर्स चोट लगने के कारण रेस पूरा नहीं कर पाया. बॉक्सिंग में मेवे क्लेयर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है. चेल्सी अब ब्रेंटफोर्ड से जॉर्डन हैंडरसन और ब्राइटन से डैनी वेलबेक को साइन करना चाहता है. द ब्लूज को एक्सपीरियंस अनुभवी पेशेवर खिलाड़ी चाहिए. हैंडरसन पिछले सीजन आयाक्स से ब्रेंटफोर्ड में आया, इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में था, जबकि वेलबेक 201 मैचों में 51 गोल स्कोर कर चुका है. प्रीमियर लीग में इन दोनों का अनुभव काम आएगा. इंग्लैंड का

0: फेंडर जॉन स्टोन्स मैनचेस्टर सिटी से जा रहा है, अभी वो फ्री एजेंट है। इन दिनों इंटर मिलान से बातें हो रही है। 6 प्रीमियर लीग टाइटल, चैंपियंस लीग, 2 एफए कप, 5 लीग कप, 3 कम्युनिटी शील्ड, क्लब वर्ल्ड कप, यूईएफए सुपर कप जीतकर वो जा रहा है। लिवरपूल में सेंटर बैक की समस्या, जो गोमेज की इंजुरी से लिवरपूल परेशान है। जेरेमी जाके और गियोवानी लियोनी अभी तक फुल फिट नहीं है। अंदोनी इहाओला इस समस्या से वाकिफ है। वान डाइक के पैर भी जवान नहीं है, कोनाती चला गया। नए खिलाड़ियों की सख्त जरूरत है। कल न्यूयॉर्क में लिवरपूल का दूसरा फ्रेंडली मैच होगा रेक्साम के खिलाफ। रेक्साम वैसे फ्रेंडली मैचों में बहुत अच्छा खेल रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था और लीड्स यूनाइटेड को भी हराया। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के कप्तान रोड्री के लिए रियल मैड्रिड सिटी से बात करने के बारे में सोच रहा है। रोड्री भी हवा बदलना चाहता है, पर मैनचेस्टर सिटी को विश्वास है कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। इधर लीड्स यूनाइटेड 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर जेम्स ट्रॉफोर्ड को साइन करने के करीब हैं। क्लब फ्रेंडलीज में कल गलातासराय की हार हुई, वेनेजिया ने उसे 3-0 से हराया। आज यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच खेले जाएंगे। रिटर्न लेग कुप्स का मुकाबला सबा से, सबा भी 1-0 से आगे है। रेड इम्स वर्सेस जालबी, 3-0 से हम जालबी आगे। दिनामो जाग्रेब का मुकाबला टून से होगा, 1-1 है अभी स्कोर। सेलिए इग्नासिया 3-3 स्कोर है। हार्ट्स स्टूम खास 4-0 से आगे है। शामरॉक आर्मेनिया 2-0 से आर्मेनिया आगे। कॉन्फ्रेंस लीग के मैच भी आज हैं और क्लब फ्रेंडलीज में रियल मैड्रिड का मुकाबला लेगानेस से होगा, डर्बी वर्सेस वेलेंसिया। और आली खेलेगा फुलहाम के खिलाफ। अस्टन विला रियल सोसिएदाद, स्टोक एवर्टन और संडे को सुपर कप यानी सिडनी में सुपर कप चेल्सी वर्सेस वंडरर्स। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। भूलिएगा नहीं NBC Sports 11 पर कॉमनवेल्थ गेम्स दिखाए जा रहे हैं और आज कुछ महत्वपूर्ण रेस हैं, जैसे क्वार्टर फाइनल जिनमें हमारे मुक्केबाज होंगे और एथलेटिक्स में 100 मीटर का फाइनल, मेंस एंड वुमेन्स 100 मीटर फाइनल। ये तो I'll catch you again at 8:30 for the latest from the sports world. Till then, enjoy the music on Radio Varsity. Take care. Bye bye.
1: Thank you, Arvind. Thank you so much.
0: देखिएगा जरूर NBC 11 पर। नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: Thank you so much.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Jumbo, Quality Deco fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds pour 100 roupies, des pieds pour 4 pieds pour 295 roupies, granit 8 pieds pour des pieds 2000 roupies, lavoir pour 3500 roupies, SPC flooring, lardoise, luminaire, sanitaire, robinetterie et plaisir les autres produits à bas prix incroyable mais vrai. Promotion là, 10 pour des semaines seulement. Pour plus de renseignements, check nos pages Facebook Quality Deco.

0: Be cautious of messages creating a sense of urgency, such as your account will be blocked or your parcel cannot be delivered. A few extra seconds to verify a message could save you from losing your personal information or even your money. Stay alert because sometimes the most dangerous scams arrive in the shortest messages.
1: TechMag was powered by
2: 365. Bien plus encore.
3: RM2.
4: Radio Musty.
3: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
4: Radio Musty.
5: एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, हम कल से बात कर रहे हैं बारजलों के बारे में. तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको हमने पहले ही बहुत सारे डिटेल्स दिए थे. और मैं आपको बताऊं कि यहां पर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको मिल सकता है. तो इनका एक जो स्टोर कॉन्सेप्ट है, परफ्यूम्स आपको मिल सकता है. एंड साथ में यहाँ पर जितने भी लोग ये जो प्रोडक्ट्स हैं यूज़ करते हैं उनको पता है कि इनमें कितने अच्छी खुशबू भी आती है. Like we were talking about the shower gel and the shampoo, we are talking about body mist and hair perfume. So yahan par jo body mist hai wo it acts like a tonic and revitalize the skin. Or शावर के बाद अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो ये जो परफ्यूम है, ये सेंट जो है वो देर तक रहता है. और चलो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर आपके स्किन की. तो अगर हो सकता है आप लोग सोच रहे हैं किसी को गिफ्ट करना, तो ये बारजलों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप इनको अपने अपनों के लिए गिफ्ट भी कर सकते हैं. तो मेरा सवाल आपके लिए है, व्हाट इज बारजलोज शॉप नंबर एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल? व्हाट इज बारजलोज शॉप नंबर एट विक्टोरियाज अर्बन टर्मिनल? आपको मुझे बताना है, इज इट A21, इज इट B39 और इज इट C45? ABC में आपको मुझे जवाब देना है ऑन 549 एंड 1294.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: एंड फ्रेंड्स, हमने आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था. हमने आपसे पूछा था, व्हाट इज बाजेलो शॉप नंबर एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल? इज इट ए 21, इज इट बी 39, इज इट सी 45? और यहाँ पर हमारे दोस्तों ने जवाब भेजे, कुछ लोगों ने गलत भेजे, कुछ लोगों ने सही भेजे. तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि सही जवाब देखकर विनर कौन बने हैं. लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाजेलो का एक ऐसा भी परफ्यूम है 122, द एन्चेंटिंग टच ऑफ हैप्पीनेस. जी हाँ, एक यूनिक परफ्यूम है जहां आपके होश उड़ा दे. हाय, परफ्यूम लगा के ऐसे चलो कि लोग मुड़कर बोले, यार क्या है ये. चलो, ऐसे में अभी विनर कौन है बता दूं मैं आपको. यहां पर सही जवाब देखकर विनर बने हैं दीप्ति जो कि रहते हैं कौछ मिलते. कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और यहाँ पर सही जवाब है बी 39. जी हाँ, बाजेलो शॉप नंबर विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल, सही जवाब है 39. थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया. और मैं आपको बताऊं कि ये गेम था आपके लिए, हम लेकर आए थे बाजेलो की तरफ से योर फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट. बाजेलो इज एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल पोर्ट लुइस एंड बाजेलो द सेंट ऑफ क्वालिटी. अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो 214-6811 पे कॉल कर सकते हैं या 5251-1805 पे कॉल कर सकते हैं. और मैं आपको बताऊं, आपको मिल रहा है एक वाउचर वर्थ 500 रुपीज जो आपके लिए पोस्ट कर दिया जाएगा. और चलिए इसी के साथ अब हम आपको पोस्ट करते हैं समाचारों की ओर जो आप सुनेंगे 8 बजे. फिर उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर हो रही है. थैंक यू सो मच मॉर्निंग बीट में विरिता का साथ देने के लिए.

0: A greatest mix of music. Feel the musty.
1: ये नमस्ते फजर के 8 बजलबा। भोजपुरी में समाचार सुना जा। एफसीसी में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटा ले जस्ती समय से पूछताछ करल गल। प्रवीण जगनाथ बोलन की ऊ शांत हवन। उ पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करे से इनकार कर दिलन। उनकर वकील अगाउफ गुलबुल पूछताछ के प्रक्रिया पर संतोष जतैलन आर बोलन की जांच निष्पक्ष आर संतोषजनक तरीका से होल। एमएमजी तेल ठेका मामला में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोबिन के संगे 7 घंटा ली पूछताछ करल गल। एफसीसी में अंडर वार्निंग पूछताछ करल गल। एसटीसी के 30 बिलियन रुपया से के अनुबंध पर सवाल करल गल। पूर्व अटॉर्नी जनरल जांच में सहयोग के भरोसा जतैलन। मनीष गोबिन दावा करलन कि उनकर संगे उत्पीड़न जैसन व्यवहार हुआ था। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 के लागू करे के प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण शुरू होता। दुगो महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार करल जाए। एकर में फाइनेंस बिल शामिल बा और आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलिनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा करल जाए। ये गो बहुत बड़ा विधेयक है जिकर उद्देश्य बजट 2026-2027 में घोषित करल गल कदम के लागू करल जाए। साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के संगे 23 को सवाल पूछल जाए। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के 17वां कंसल्टेटिव कमेटी के बैठक काल पोर्टलिस नगर पालिका में आयोजित करल गल। बैठक में मुख्य रूप से अप्रवासी घाट के भिरी स्थित बफर जोन आर हुआ करे सकल चाहुला आर नहीं करे सकल चाहुला विकास काम पर चर्चा होल। इस सब विकास परियोजना के यूनेस्को बगल से विश्व धरोहर स्थल के बफर जोन खातिर निर्धारित दिशा निर्देश के पालन करे के परी। और दूसर देश के खबर में उत्तरी इराक में ढेर जगह पर ड्रोन से हमला करल गल बा। इस सब हमला ईरान के बगल से करल गल बा। एबिल में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के भीरी धमाका सुनाई देवल गल। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सब कोई के नमस्ते।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: A very good morning once again. सुबह की 8:07 हुई और हम साथ साथ हैं. Yes, we're together. मैं साथ रहूंगी 9 तक. कैसे हो? कहाँ पहुंचे? गाड़ी चला रहे हो? आज इतना ट्रैफिक नहीं है, झूठ मत बोलो. आज इतना भी ट्रैफिक नहीं है जहाँ इतना होता था. अभी क्या है ना कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो क्या होता है कि रोड थोड़ा बसें कम होती हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक फ्री होता है. विकास पहुंचे. हाँ, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड जानना चाहेंगे आज का मौसम कैसा रहेगा. अब बच्चे घर पे हैं, कितने सारे लोग छुट्टी लेकर घर पे होंगे, तो बच्चों के साथ बाहर जाना होगा. चलिए गीता जी से मिलते हैं, जानते हैं मौसम का हाल.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ओनली टू विनर्स.
4: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं. उत्तर पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ेगा. आज सुबह उत्तर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी. दोपहर बाद को दक्षिण पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी. अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा. न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा. दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और दिन के दौरान पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में सुधार आने लगेगा. सूर्योदय 6:41 पर और शाम 5:51 पर सूरज ढल जाएगा.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: सुबह के 8:18 हुए हैं. वेलकम टू रेडियो मस्ती, वेलकम टू मॉर्निंग बीट विनीता के साथ. चलिए आपके लिए फिर लेकर आए हैं हम गिफ्ट. आपको लग रहा होगा ना कि कहीं दिसंबर आ गया, क्या हो गया, क्रिसमस आ गया, इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, अब क्या करें. हमारा जो रेडियो मस्ती है इसमें एक के बाद एक गिफ्ट मिलते रहते हैं और हमारा काम होता है आपको खुश करना. मोगैम्बो खुश हुआ विनस की तरफ से ₹500 का गिफ्ट वाउचर है आपके लिए और इसको अगर आपको पाना है तो क्या करना है, बस शांति सुन मेरी बात. चलो आपको करना क्या है, आपको मुझे बताना है इस सवाल का जवाब. तो until 30th of July what is the normal price and the promotional price of jewel nitwayo menage 1.25 liters. okay, aapko mujhe batana hai until 30th of July what is the normal price and the promotional price of jewel nitwayo menage 1.25 liters aur aapko mujhe sahi jawab dena hai on 5499 1294.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलिए जी, आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है और आपको हमने पूछा था

until 30th of July. What is the normal price and the promotional price of Jewel Netwayo Menagerie 1.25 liters? और यहाँ पर सही जवाब है normal price 145 rupees, promotional price है 90 rupees 95 cents. और यहाँ पर हमारे सवालों का बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन विनर कौन है? चलिए जानते हैं. विनर है अंजीना बैरू फ्रॉम वाकवा. कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है विनर्स की तरफ से 500 रुपीस का वाउचर. और आपको कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. आपका ये वाउचर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा. हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट थोड़ी देर में करेंगे आपको ट्रिंग ट्रिंग कॉल और सारी डिटेल्स ले लेंगे आपसे. तो चलिए आप लोग खुश हो जाइए. जिनकी जीत आज नहीं हुई है, डोंट वरी, व्हाई फियर व्हेन वेडिटा इज नियर, यानी कि आज नहीं तो कल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. गेम तो रोज होता है ना.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: क्या किया जिसने प्यार ना किया, क्या किया जिसने गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया और इनाम नहीं जीता। चले भाई, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और गेम।

The game is powered by Rajasthan Works Limited. आप खेलिएगा और आपको मिल सकता है इन एक्साइटिंग प्राइजेस एंड यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन फोर एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थालिया द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो हो रहा है और इट्स पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी शुरू हो रहा है 12 अगस्त से चलेगा 16 अगस्त तक एट एसबीआई सीसी बाय अस फ्रॉम 10 AM टिल 9 PM तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ इन पांच दिनों में यू गन एक्सपीरियंस बहुत कुछ शॉपिंग के साथ एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन जहां पर इंटरनेशनल होम शॉपिंग होगा एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शोज साथ में लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर साथ में कानमा का शो होगा ब्लड डोनेशन कैंप होगा फूड फेस्टिवल होगा एंड इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड तो आप हमारे साथ अगर यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं और खाना एंजॉय करना चाहते हैं शॉपिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो चलो आप हमारे साथ जुड़े रहो और हमें ये बताइए जी हाँ हमें ये बताइए कि एक फिल्म आई थी कॉकटेल वैसे तो कॉकटेल 2 में आपको पता ही है शाहिद है उसमें आप जानते हैं रश्मिका मंदाना है कृति सानन है लेकिन जो पहली मूवी आई थी कॉकटेल उसमें दो हीरोइंस हैं आपको मुझे दीपिका के अलावा जो दूसरी हीरोइन है उनका नाम बताना है 5491294

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: यहाँ पर भी वो आ गए हैं और ये कहते हुए आए हैं कि मुझे जवाब पता है, मुझे जवाब पता है, लेकिन मुझे आपसे जवाब नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिसनर्स से जवाब चाहिए। और मैंने पूछा था कि जो मूवी आई थी कॉकटेल, पहली बारी जो वाली आई थी मूवी सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ, वो कौन हीरोइन है? वैसे उन्होंने अपना डेब्यू किया था।
3: ये कौन सी पिक्चर आई, मुर्गे की पूंछ, कॉकटेल, किस मूवी की बात करती हो तुम?
2: मैं उस मूवी की बात कर रही हूँ जो 2012 में आई थी, एंड इट वाज अ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा। और इसे पता है सैफ अली खान और दिनेश विजन ने ही प्रोड्यूस किया था, एंड इसमें दीपिका पादुकोण और जो हीरोइन अपनी डेब्यू की थी उन्होंने, वो है डायना पेंटी, विच इज़ द राइट आंसर। और इस फिल्म के गाने कमाल के थे और कहानी भी बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बाद कॉकटेल 2 आई जिसके गाने कमाल के हैं, मूवी भी काफ़ी अच्छी चली, आई एम नॉट सेइंग नहीं चली, बहुत अच्छी चली।
3: हाँ, मुर्गे की दो पूंछ,
2: नहीं प्लीज प्लीज डोंट डू दिस टू मी मॉर्निंग में। अच्छा ठीक है, तो सही जवाब है डायना पेंटी। चलिए जानते हैं कौन है विनर, मुर्गे की दो पूंछ। हाँ, तो यहाँ पर सही जवाब देकर विनर बनी है मौसमी देवी मंगरू इमरित। काफी लंबा नाम है लेकिन ठीक है, आपका नाम यहाँ पर आया है एंड आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है यहाँ एक टिकट। जी हाँ, एक्चुअली एक नहीं, आपको चार टिकट्स मिल रहे हैं और आपको साथ में मिल रहा है एक फूड कूपन भी फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा एट SBI CC Pi, सुबह के 10 बजे से रात के 9 बजे तक। ओह माय गॉड, शॉपिंग ही शॉपिंग, शॉपिंग ही शॉपिंग, क्या बात है, क्या बात है। एंड द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड, तो ऑर्गेनाइज किया गया है इवेंट वर्क्स लिमिटेड की तरफ से। शॉपिंग के साथ एंटरटेनमेंट, यहां पर होगा लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन। यहाँ पर बहुत सारे शोज भी होने वाले हैं, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, फूड फेस्टिवल होगा और भूलिएगा नहीं कि धर्मेश सर भी आ रहे हैं इसका हिस्सा बनने के लिए।

0: मुझे भगा भगा क्यों भगा
1: नहीं, सुबह
0: क्यों
1: भागा
0: क्यों भगा रहे
1: क्यों भाग रहा है लेकिन अभी जो स्कूल हॉलीडेज है उसके जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन ये बता दें कि जो ब्रेक नहीं ले रहे वो है स्पोर्ट्स की दुनिया में ग्लासगो से लेकर चल रही है क्या क्या कहानी क्या क्या तैयारी सब जान लेते हैं हम अरुण के साथ एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो सुबह 7:30 मिस कर गए थे गुड मॉर्निंग
2: स्पोर्ट्स न्यूज रेडियो मस्ती इन द मिक्स
0: तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं अरविंद का गुड मॉर्निंग अरविंद
3: गुड मॉर्निंग आपको गुड मॉर्निंग आरएम2 लिसनर्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड ग्लासगो स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जारी हैं मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया आगे हैं 26 गोल्ड मेडल 26 गोल्ड मेडल टोटल 59 इंग्लैंड के पास है 8 गोल्ड मेडल टोटल 32 कनाडा 7 नाइजीरिया 6 स्कॉटलैंड 5 टीम इंडिया के पास 2 गोल्ड मेडल है टोटल 10 आज 27 गोल्ड मेडल जीते जाएंगे एथलेटिक्स में 6 फाइनल है इनमें मेंस एंड वुमेन्स 100 मीटर्स के फाइनल भी हैं मॉरिशस से राशेल क्रोपेनस्टाइन 800 मीटर के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई हैं 110 मीटर हर्डल में जेरेमी लारारोडर्स चोट लगने के कारण रेस पूरा नहीं कर पाया बॉक्सिंग में मेवेक्लेयर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है चेल्सी अब ब्रेंटफोर्ड से जॉर्डन हैंडरसन और ब्राइटन से डैनी वेलबेक को साइन करना चाहता है द ब्लूज को एक्सपीरियंस अनुभवी पेशेवर खिलाड़ी चाहिए हैंडरसन पिछले सीजन आयाक्स से ब्रेंटफोर्ड में आया इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में था जबकि वेलबेक 201 मैचों में 51 गोल स्कोर कर चुका है प्रीमियर लीग में इन दोनों का अनुभव काम आएगा इंग्लैंड का डिफेंडर जॉन स्टोन्स मैनचेस्टर सिटी से जा रहा है अभी वो फ्री एजेंट है इन दिनों इंटर मिलान से बातें हो रही हैं 6 प्रीमियर लीग टाइटल चैंपियंस लीग 2 एफए कप 5 लीग कप 3 कम्युनिटी शील्ड क्लब वर्ल्ड कप यूईएफए सुपर कप जीतकर वो जा रहा है लिवरपूल में सेंटर बैक की समस्या जो गोमेज की इंजुरी से लिवरपूल परेशान है जेरेमी जाके और गियोवानी लियोनी अभी तक फुल फिट नहीं है अंदोनी इहाओला इस समस्या से वाकिफ हैं वान डाइक के पैर भी जवान नहीं है कोनाते चला गया नए खिलाड़ियों की सख्त जरूरत है कल न्यूयॉर्क में लिवरपूल का दूसरा फ्रेंडली मैच होगा रेक्साम के खिलाफ रेक्साम वैसे फ्रेंडली मैचों में बहुत अच्छा खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था और लीड्स यूनाइटेड को भी हराया वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के कप्तान रोड्री के लिए रियल मैड्रिड सिटी से बात करने के बारे में सोच रहा है रोड्री भी हवा बदलना चाहता है पर मैनचेस्टर सिटी को विश्वास है कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा इधर लीड्स यूनाइटेड 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर जेम्स ट्रॉफोर्ड को साइन करने के करीब हैं। क्लब फ्रेंडलीज में कल गलातासराय की हार हुई वेनेजिया ने उसे 3-0 से हराया आज यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच खेले जाएंगे रिटर्न लेग कुप्स का मुकाबला सबा से सबा भी 1-0 से आगे हैं रेड इम्स वर्सेस जाल्बी 3-0 से हम जाल्बी आगे डिनामो ज़ाग्रेब का मुकाबला टून से होगा 1-1 है अभी स्कोर सेल्ये इग्नासिया 3-3 स्कोर हैं हार्ट्स स्टूम खास 4-0 से आगे हैं शामरॉक आर्मेनिया 2-0 से आर्मेनिया आगे कॉन्फ्रेंस लीग के मैच भी आज हैं और क्लब फ्रेंडलीज में रियल मैड्रिड का मुकाबला लेगानेस से होगा डर्बी वर्सेस वेलेंसिया और आली खेलेगा फुलहाम के खिलाफ अस्टन विला रियल सोसिएदाद स्टोक एवर्टन भूलेगा नहीं एमबीसी चैनल 11 स्पोर्ट्स 11 पर द कॉमनवेल्थ गेम्स लाइव आज काफी फाइनल्स होंगे खासतौर पर 100 मीटर के फाइनल जबरदस्त होने वाले हैं वेट टिल देन एंजॉय एंड हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती बाय बाय
0: थैंक यू सो मच अरविंद लेकिन आपने अभी बात कर ली स्पोर्ट्स की तो हमने भी सोचा स्पोर्ट्स वर्ल्ड में मोर विकास घुस ही जाते हैं
2: A good beat for your morning show. RM2
4: Radio Musti.
0: चलो अभी सवाल कर दो वरना तुम मुझे दो गुना लगान देगा
1: नहीं कुछ लगान वगान दे ये हो गया आमिर खान और उसकी टीम ने कर लिया काम
0: तो लगान टू नहीं आ रहा
1: नहीं आ रही नहीं लगान
0: ओह माय गॉड
1: नो लगान खाली गानों के

0: लगन
1: ओके ओके तो लगन लगाते हैं लगन
0: ऑलराइट right, आपको बताने की आपको मिल सकता है एक वाउचर और ये होगा आपको मिल सकता है ₹500 गिफ्ट वाउचर और ये है आयुर योगा की तरफ से योर रिलैक्सेशन मोमेंट इज राइट हियर आरएम2 के साथ खेलिए और मिल सकता है आपको गिफ्ट वाउचर ₹500 का ऑफर्ड बाय आयुर योगा एक्चुअली आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागांजा सीजन 4 आने वाला है मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन आगे वापस एक बहुत ही एक्साइटिंग टूर्नामेंट के लिए और ये होगा इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP ये शुरू होने वाला है फ्रॉम द 1st ऑफ अगस्त डिटेल्स होगा थोड़ी देर में कौन सी टीम है कब का मैचेस होने वाले हैं हाँ। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन वेदिता
1: सवाल
0: तुम्हें लोग कहते हैं लिली हाउ सिली
1: हाँ मुझे कहते हैं हाउ सिली
0: हाँ तो ये पूछ रहा हूँ कि हमें बताइए क्या ये सच है कि नहीं भाई है? क्रिकेट के अंदर क्या सिली पॉइंट होता है हाँ कि ना क्या क्रिकेट में सिली पॉइंट होता है सोचिए मुझे बताइए 5499-1294 पर और ये वाउचर हो सकता है आपके नाम ये नाम इनाम
2: RM2 Radio Musti Feel the Musti

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह.
3: हाँ वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात कर रहे थे. हाँ. लेकिन एक क्वेश्चन और था आपके लिए, और वे था कि क्रिकेट के अंदर क्या सिली पॉइंट होता है कि नहीं.
2: बहुत छोटा सा सवाल था.
3: हाँ, सिली पॉइंट होता है कि नहीं. एंड द करेक्ट आंसर इज यस, सिली पॉइंट होता है. yes. क्रिकेट के अंदर एक बहुत ही हाई रिस्क पोजीशन होती है, बहुत ही क्लोज टू द बैट्समैन, और आपके क्विक रिफ्लेक्सेस होने चाहिए कि आप कैच को पकड़ लो. कैचेस विन मैचेस, ये सच बात है. और यहाँ पर सही जवाब देकर लकी मैन भी मिल गए. कौन
2: ये है? मिस्टर रोशन पंचे, जिन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है. आप रहते हैं बॉशरी. कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है,
3: आपको मिल रहा है एक गिफ्ट वाउचर. राइट, इट्स टाइम फॉर योर रिलैक्सेशन. भाई RM2 के साथ खेला, सही जवाब दिया, और आपको मिल गया ₹500 गिफ्ट वाउचर फ्रॉम आयुर योगा इंटरनेशनल. सो कंग्रेचुलेशंस आपको. और जैसे बता रहे थे कि आयरलैंड क्रिकेट एक्सट्रावागांजा ये 1st ऑफ अगस्त से शुरू होने वाला है season 4. इसमें लगाएंगी बहुत सारी टीमें अपना जोर, और ये होगा एट SSR इंटरनेशनल. अरे हमारे लिए तो इंटरनेशनली है, क्रिकेट ग्राउंड मापू में, और वहां पर 6 टीम्स होगी. कॉन्टिनेंटल चीतास, एमजी पैंथर्स, कैंपस अब्रॉड

0: लायंस, एपीपी लेपर्ड्स और वन हेल्थ जैगुआर्स और साथ में थॉमस कुक टाइगर्स. बस आप समझ लीजिए कि आपको वहां पहुंचना है.
1: इतना खतरनाक
0: मैचेस सैटरडे आफ्टरनून को होंगे और संडे मॉर्निंग को. वेता तुम्हारे लिए क्वेश्चन.
1: हाँ
0: नहीं, मैच देखने तो जाओगी.
1: हाँ.
0: लेकिन वो पिक्चर आए थे एक था टाइगर.
1: हाँ.
0: उसका अगर सीक्वल बना तो
1: एक था टाइगर,
0: एक था लेपर्ड, एक था जैगुआर, एक था लायन. बहुत सारे बन सकते हैं.
1: थैंक यू.

0: दोस्तों सॉरी तभी काम आता है जब इंसान गलती करता है पर जहां जानबूझकर किसी के विश्वास को तोड़ा जाता है वहां पे नहीं तो लाइफ में आप अगर हो सके अनजाने में गलती हो गई सॉरी बोल सकते हैं लेकिन जानबूझकर किसी के विश्वास को तोड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि माफ करना और फिर से विश्वास करना इतना आसान नहीं होता और ये भी हमेशा याद रखना कि a smile doesn't always mean a person is happy कभी-कभी इसका सीधा मतलब होता है कि they are strong enough to face their problems तो जब भी किसी से मिलो प्यार से मिलो मुस्कुरा के मिलो क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन अपनी लाइफ में किस साइक्लोन से गुजर रहा है किस मुश्किल से गुजर रहा है किस परेशानी से गुजर रहा है कभी-कभी एक सिंपल हाय एक सिंपल गुड मॉर्निंग एक सिंपल हग काफी फर्क पड़ता है इससे
1: A good beat for your morning show Morning Beat RM2
2: Radio Musti
0: चलिए मेरे जाने का टाइम हो गया है निर्मनी के आने का आपसे मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग में 7 बजे अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल

0: समाचारों को लेकर गीता जी आ चुकी है। गीता जी, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सुमी, सभी को हमारा नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अंडर वार्निंग पूछताछ की। ये पूछताछ साल 2023-2024 के लिए मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को लगभग 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की जांच के सिलसिले में की गई। आज तड़के करीब 2 बजे बाहर निकलने के बाद एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे पूरी तरह शांत और आश्वस्त हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पूछताछ के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की और केवल इतना कहा कि जांच अभी जारी है। पूछताछ समाप्त होने के बाद वकील रऊफ गुलबुल ने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके मुवक्किल के साथ किस तरह पूछताछ की गई। उन्होंने जांच की पूरी प्रक्रिया की भी सराहना की। 60 घंटे तक चली पूछताछ कल पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोबीन ने रिजवी स्थित फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के दफ्तर में करीब 7 घंटे बिताए। अंडर वार्निंग पूछताछ के तहत मौजूदा एमएसएम के महासचिव से स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा साल 2023-2024 के लिए सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का ठेका दिए जाने के मामले में पूछताछ की गई। इस ठेके की कीमत लगभग 30 बिलियन रुपए की आंकी गई है। रात करीब 8 बजे रिजवी थ्रियांगले से बाहर निकलने के बाद मनीष गोबिंद ने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारियों को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और एसटीसी के बीच हुए कानूनी मत और पत्राचार के बारे में पूरी जानकारी दी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। और दूसरी ओर मनीष गोबिंद ने कहा कि उन्हें अब तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर उन पर किस बात का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ये ठेका दिए जाने की प्रक्रिया में उनकी किसी भी समय कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी दोहराया कि उन्हें स्टेट लॉ ऑफिस के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो रहा है। 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा, इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं। आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी। ये एक व्यापक विधेयक है जिसका उद्देश्य बजट 2026-2027 में घोषित कई कदमों को लागू करना है। साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 23 सवालों के जवाब देंगे। और विदेश में उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये हमले ईरान के तरफ से हुए हैं। एयरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके हुए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: Well, हीरो का तो पता नहीं लेकिन रेडियो मस्ती साथ में जरूर रहेगा. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर मस्ती मॉर्निंग शो विद नर्मनी, जहां पर होने वाला है कुछ ही देर में योर होरोस्कोप टिप्स और ढेर सारे सरप्राइजेस. तो यही पर रहना कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती पर.
2: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, good music के साथ good vibes भी शामिल है. ऊपर से आज कितने सारे birthdays हैं. आज 28th of July को है birthday आयशा जुल्का के actress का, Bollywood actress का. और वो born हुई थी 28th जुलाई को श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में. एंड उनके बहुत सारे पॉपुलर मूवीज थे, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, रंग, वक्त हमारा है, बलमा, संग्राम, होते होते प्यार हो गया. कितने सारे अच्छे गाने भी हैं उन मूवीज में. अंजलि हो या खिलाड़ी की नीलम, उन्होंने अपनी मासूम मुस्कान और ज़बरदस्त एक्टिंग से लाखों दिल जीते हैं. और जब भी पहला नशा बजता है ना, तो आयशा जुल्का की याद अपने आप ताज़ा हो जाती है. तो आपके लिए मस्त गाने लाते रहेंगे, आप बस कनेक्टेड रहना. एंड अगर आज आपका कोई स्पेशल दोस्त या फिर फैमिली का बर्थडे है, 5499-1294 पर हमें भेजना जरूर अपने मैसेजेस और डेडिकेशंस.
2: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अभी के लिए शेयर करती हूँ एक फन फैक्ट आपके साथ। क्या आप जानते हैं मुस्कुराने से चेहरे की कई मसल्स एक्टिवेट होती है और एक मुस्कान आपके आसपास के लोगों का मूड भी बेहतर बना सकती है। तो आज इवन दो आपका मूड खराब है, आज किसी को एक स्माइल जरूर दीजिएगा और अब देखना है कि कैसा मैजिक क्रिएट हो जाता है। तो अभी के लिए वापस डाइव करते हैं म्यूजिकल दुनिया में कुछ ही देर में। इट्स गोना बी योर हॉरोस्कोप टाइम।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: यानी सभी के लिए चलिए जानते हैं आज का राशिफल क्या होंगे आपके लकी नंबर्स और कलर्स. तो चलिए शुरू करते हैं वेदर.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज आपके अंदर ना उत्साह और हिम्मत भरपूर मात्रा में रहेगी. किसी नए काम की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है. अपनी बातों में विनम्रता बनाए रखें, इससे रिश्ते और भी मजबूत होंगे. लकी कलर आपका है केसरी और रन नंबर है 8.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज धैर्य से लिया गया हर फैसला आपके पक्ष में जा सकता है. घर के किसी सदस्य के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना ही बेहतर होगा. लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 2.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी बातचीत का अंदाज लोगों को प्रभावित करेगा. किसी पुराने मित्र से अच्छी खबर मिल सकती है. छोटी बातों पर अधिक सोचने से बचे. लकी कलर आपका है आसमानी और नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज परिवार और अपनों के साथ समय बिताकर मन को सुकून मिलेगा. काम में लगन बनाए रखें, सफलता धीरे धीरे आपके पास आएगी. लकी कलर आपका है सफेद और नंबर है 1.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आपकी नेतृत्व क्षमता सबका ध्यान खींच सकती है. किसी पुरानी योजना पर दोबारा काम करने से लाभ हो सकता है. आत्मविश्वास आप बनाए रखें. लकी कलर आपका है सुनहरा और नंबर है 9.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज सही तरीके से किया गया काम जल्दी ही पूरा होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम भी करें. लकी कलर आपका है हल्का हरा और नंबर है 6.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज संतुलन और समझदारी से हर परिस्थिति को संभाल लेंगे आप. किसी नए व्यक्ति से भी मुलाकात में भविष्य में लाभदायक साबित होगी. लकी कलर आपका है गुलाबी, नंबर है 3.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए. गुस्से की जगह शांत स्वभाव अपनाएंगे तो हर काम आसान लगेगा. लकी कलर है मरून और नंबर है 4.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: आज सीखने का और कुछ नया जानने की इच्छा बढ़ने वाली है. किसी यात्रा या नए अवसर की चर्चा हो सकती है. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें. लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 7.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज जिम्मेदारियों को निभाने में आप सफल रहेंगे. मेहनत का फल धीरे धीरे मिलना शुरू होगा. खुद पर भरोसा बनाए रखें. लकी कलर आपका है ग्रे और नंबर है 10.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है. किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का अच्छा दिन भी है. लकी कलर आपका है फिरोजी और नंबर है 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: आज अपनी भावनाओं को संतुलित रखने की कोशिश करें. आपके जो इमोशंस हैं, आप जब उन्हें संतुलित करेंगे तो खूब लाभ होगा आपको. किसी अपने का साथ आपको नई प्रेरणा दे सकती है. मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें. लकी कलर आपका है लैवेंडर और नंबर है 12.
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning. सुबह के 10 बजे हैं. चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे गीता जी नमस्कार.
6: नमस्कार निर्मनी, सभी को हमारा नमस्कार. एफसीसी में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई. प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे शांत हैं. उन्होंने पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उनके वकील राव गुलबुल ने पूछताछ की प्रक्रिया पर संतोष जताया और कहा कि जांच निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से हुई. एमएमजी टेल ठेका मामले में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद से 7 घंटे तक पूछताछ की गई. एफसीसी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई. एसटीसी के 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल किया गया. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जांच में सहयोग का भरोसा जताया. मनीष गोविंद का दावा है कि उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार हो रहा है. आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो रहा है. 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा. इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं. आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल

0: मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी। ये एक व्यापक विधेयक है जिसका उद्देश्य बजट 2026-2027 में घोषित कई कदमों को लागू करना है। साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम 23 सवालों के जवाब देंगे। और विदेश में युगांडा में भूख से मौत की खबरें फिर दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। देश के पूर्वी हिस्से में लंबे समय से जारी सूखे के कारण भूख से 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद सरकार ने आपातकालीन खाद्य राहत वितरण शुरू किया है। मौसम की अपेक्षित बारिश नहीं होने से फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे इस इलाके में रहने वाली करीब 15 लाख आबादी गंभीर खाद्य कमी और बढ़ते कुपोषण का सामना कर रही है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ देर में शोक समाचार। रॉयल रोड रसबेल में 92 साल की 92-year-old की मिसेस बीबी सफूरा बिलत, पैदाइश नाम कोडाबक्स और जो सफूरा से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके दामाद सकूर पामिसा के घर रॉयल रोड रसबेल से उठाकर यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रेलवे टू स्ट्रीट वापियोले में 56 साल के 56-year-old के श्री रवि सिंह भुवन, जो डारा से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनके घर रेलवे टू स्ट्रीट वापियोले से उठाकर वामौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, it's your RM2 Radio Musty and आपके मौजूदगी का एहसास हो रहा है messages के जरिए. Good morning. स्वागत है आपका once again अपने मस्टी मॉर्निंग शो में विद नमनी. बिग हेलो टू जीना जॉयसुरी जी, अनसुया जी जो साथ दे रही है निगोव से, हैरी जी जो गा रहे हैं गानों के साथ. ऐसे ही जुड़े रहिए क्योंकि गेम्स होंगे, टिप्स होंगे और बर्थडे डेडिकेशंस भी. एंड अगर आपके पास भी कुछ शेयर करना है तो नंबर तो आपके पास में ही है 5499124 पर हमें मैसेज करना ज़रूर.
2: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Cadavo Platinum de 20 kg est à 1449,80 roupies.
1: RM2 Radio Musti.

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती।
2: चाची साक फॉर्मोविन को तू गए बों पफ एंड जुरी बिरयानी पुलाव की सा बों जुरी ला सा।
3: अरे बेटी मो पे सेवी जुरी इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस सेट एंड जुरी 11-21 एक्स्ट्रा लॉन्ग की पा कासे सो रनमेंट एक्स्ट्रा बों ली एंड नेचुरली एज्ड राइस पा बिजा दिया तो सो पफ ला डेपी डन बूट चमे जी मन विन दे मन मोआ की जुरी सा बेटी वो ला पेन टॉल रोड ली सा इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस।
2: Merci Chachi. Moi aussi m'a poussé à vie. J'aurai India Gate Excel Basmati Rice.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: tips powered by Halkuri Fashion, house of ready-made garments.
1: ये सफर से लेकर आए हैं आज के लिए फैशन टिप, एंड वो है कि अपने वार्डरोब में क्लासिक व्हाइट शर्ट जरूर रखिए। उससे आप जीन्स के साथ कैजुअल लुक, ट्राउजर्स के साथ ऑफिस लुक और एथनिक वेयर के साथ फ्यूजन लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। एक पीस लेकिन कई स्टाइलिश लुक्स।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: साढ़े दस बजे हैं एंड आप कनेक्टेड हो चुके हैं आरएम जी वेडियो मस्ती के साथ. एंड आपको पता है दोस्त, आज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे. ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है. छोटे छोटे कदम जैसे कि पानी की बचत करना, प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करना, पेड़ पौधों लगाना और बिजली बचाना, मिलकर हम सब धरती के लिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं. तो आज अपनी ओर से छोटे छोटे एक्शंस करना ना भूलें. ऐसे ही आरएम जी वेडियो मस्ती के साथ यू स्टे कनेक्ट Connected, good vibes के लिए.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: टिप्स के साथ साथ इस आवर में एक गेम भी है आपके नाम एंड गेम पावर्ड है बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड एंड आप जीत सकते हो 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल के लिए जो पावर्ड है बाय SBI एंड LIC एंड वो होने वाला है SBICC पाए पर 12 से लेकर 16 अगस्त तक एंड क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जो गाना हमने अभी चलाया वो किस मूवी से है यह सब आपको बताना है मूवी का नाम जो अभी अभी चला एंड आप बन सकते हो विनर ऑफ द टिकट्स एंड फूड कूपन 5491294 पर वेटिंग फॉर योर आंसर्स.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: Alala ki zoli zoli, kumpa kone ki zoli zoli. Alala ki zoli zoli, oui King Sever's ki zoli zoli.
2: Uniquement chez King Sever's, du 24 juillet au 24 août, le riz basmati 1121 King's Choice de 5 kg est à 349,80 €. Le riz basmati 1121 King Savo Platinum de 20 kg est à 1449,80 €.
1: Gardons King Sever's ki zoli zoli.
3: RM2
4: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: गेम ऑन गोइंग आरएम2 वीडियो मस्ती पर और जीत सकते हो आप एक नहीं बल्कि चार एंट्री टिकट्स और एक फूड कूपन फ्रॉम जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली फॉर द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल। जवाब हमें बहुत मिले लेकिन विनर तो एक ही हो सकता है और आज का वो लकी पर्सन है। And yes, आप है यश। Congratulations on winning the 4 entry tickets and 1 food coupon। आप experience कर पाओगे International Home Shopping Festival, entertainment shows, magic shows, a fashion show, live performance by Indian Idol singer Parinay Jain, special appearance भी होगा by Bollywood choreographer Dharmesh Sir, Canva का show होगा, blood donation camp है, food festival भी है, सभी organized by Event Works Ltd. तो जिनकी जीत नहीं हो पाई नो वरीज, और भी गेम्स होंगे, आप बस कनेक्टेड रहिएगा, ट्यून्ड रहिएगा RM2 वीडियो मस्ती के साथ।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty. Feel the musty. The
4: musty. Morning. सुबह के 11 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार.
5: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार. आज से राष्ट्रसभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो रहा है. दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा. इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं और आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी. ये एक व्यापक विधेयक है जिसका उद्देश्य बजट 2026-2027 में घोषित कई उपायों को लागू करना है. साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 23 सवालों के जवाब देंगे. अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की 17वीं कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक कल पोर्ट लुइस नगर पालिका में लगी. बैठक में मुख्य रूप से अप्रवासी घाट के आसपास स्थित बफर जोन और वहां किए जा सकने वाले या नहीं किए जा सकने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई. इन सभी विकास परियोजनाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की बफर जोन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. और विदेशी स्तर पर मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सॉक को फिर से शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया है. उन्होंने सदस्य देशों से इलाके के हित में बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की अपील की. सॉक में 8 सदस्य देश शामिल हैं. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. इसके साथ संक्षिप्त समाचार

0: आप थे कुछ ही देर में शोक समाचार। रेलवे टू स्ट्रीट बॉपियोले में 56 साल के 56 ईयर ओल्ड के श्री रवि सिंह भुवन, जो डारा से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर बाद के 3 बजे उनके घर रेलवे टू स्ट्रीट बॉपियोले से उठाकर वाम और शौक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। रू जिकेल मोसलमान बाप्टिस्ट ओकुले में 87 साल की 87 ईयर ओल्ड की श्रीमती ओमुडों कारुपुनन पैदाश नाम सुकुमानी और जो मीना से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर रुशिकेल मोसलमो बाप्टिस्ट ओकुले से उठाकर सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमरो एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: लड़की यही है 12 बजे तक आपके लिए मस्ती मॉर्निंग शो में गुड म्यूजिक और टिप्स के साथ. वी कंटिन्यू दिस थर्ड एंड लास्ट आवर. आपके मैसेजेस डेडिकेशंस 5499124 पर डू सेंड अस. वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:18 हुए हैं और एक टिप ला रहे हैं आपके लिए, और वो है कि हर हफ्ते एक रीयूजेबल वाटर बॉटल और एक क्लॉथ बैग साथ साथ रखने की आदत डालिए। उससे क्या होता है, आप शॉपिंग भी आसानी से कर पाओगे और ना सिर्फ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा बल्कि आप हमेशा हाइड्रेटेड भी रहेंगे। वैसे ही आज है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे एंड आपकी छोटी छोटी सी आदत नेचर के लिए बड़ा योगदान होगा, तो आप वो करें जो अच्छा है प्लैनेट के लिए और अपने आप को भी सैटिस्फैक्शन दीजिए कि आप भी कुछ कर रहे हैं प्लैनेट के लिए।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: चाची साग फॉर्म ओवन को तू गए बों पर ऑफेंस जुरी बिरयानी पुलाव की सा बों जुरी ला सा।
3: अरे बेटी मो पे सेवी जुरी इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस सेट एन जुरी 11-21 एक्स्ट्रा लॉन्ग की पा कासे सुरनमेंट एक्स्ट्रा बों ली एन नेचुरली एज्ड राइस पा बिजा दिया तो सो पर ऑफे ला डेपी दान बूट चेमें जी मोन विन देमन मोआ की जुरी सा बेटी वो ला पेन तो अल रोड ली सा इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस।
2: Merci Chachi. Moi aussi m'a poussé à vie. J'aurai India Gate Excel Basmati Rice.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: Saviez-vous qu'après chaque repas, vos dents sont exposées à des bactéries? Pour les neutraliser, prenez un chewing-gum sans sucre Fridents. Toujours à portée de main et agréable à mâcher, les chewing-gums Fridents vous aident à garder des dents propres, en pleine santé et une haleine toujours fraîche. Fridents, à vous de briller.
3: शादी की खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा एकर जरूरत नहीं पड़ी काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली डिजाइनर लहंगा लच्छा साड़ी जोधपुरी क्रॉप टॉप शेरवानी सूट ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में हलकोड़ी फैशन रॉयल रोड पॉम्पलेमसिस गार्डन के सामने फोन नंबर 5799378 2 हलकोड़ी फैशन परंपरा एलिगेंस और कारीते
4: अलाला की जोली जोली ऊपर को नेकी जोली जोली अलाला की जोली जोली फ्री किंग सेवर्स की जोली
5: uniquement chez King Savers du 24 juillet au 24 août le riz basmati 1121 King's Choice de 5 kg est à 349,80 €. Le riz basmati 1121 King Savo Platinum de 20 kg est à 1449,80 €.
6: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: यस, आप कनेक्टेड हो चुके हो आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ और आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडीज हैं. नमस्ते.
2: नमस्ते.
0: क्या बात है, क्या जोश है. और हमारे साथ बैठी हुई है, आपका नाम क्या है?
3: माया भक्तवंत सिंह.
0: माया जी, आप कैसी हो?
3: मैं ठीक हूँ.
0: ओके, मैं भी ठीक हूँ. आप कहाँ से आए हो?
3: हम काठोबोन से आए हैं, शिवोपासक महिला सभा की ओर से और सीनियर सिटीजन की ओर से भी. हम यहाँ आज एक विजिट करने आए हैं. बहुत बहुत खुशी हुई हमें, बहुत बहुत सुकून मिला यहाँ आकर और हमें बहुत खुशी भी हुई. हमें बहुत सारे जगहों का विजिट कराने को मिला.
0: आपका आपकी फर्स्ट टाइम है जब आप?
3: नहीं नहीं, बहुत पहले आए थे जब हाल में मौका आए थे एमबीसी, तब आए थे. लेकिन अभी जब आए हैं तो बहुत परिवर्तन चेंज हुआ बहुत.
0: आप लोग सीढ़ियों से आए हैं या फिर लिफ्ट लेकर आए हैं?
3: सीढ़ियों से. हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है जो अभी सहारे के साथ चलती है, वो भी सीढ़ी से आए हैं ऊपर.
0: तो क्या बात है, अच्छी बात है कि आप लोग एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो.
3: हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है.
0: अब रोज चलते हो?
3: चलते तो है.
0: अच्छी बात है. तो आप के पास कौन सा मैसेज है दुनिया को देने के लिए आज?
3: दुनिया को देने के लिए सभी को अपने स्वास्थ्य की यही चिंता करनी चाहिए. यही व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, अभी अपने स्वास्थ्य की देखभाल करो. अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है.
0: एग्जैक्टली.
3: और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है. यही सबसे बड़ी बात है.
0: सबसे बड़ी बात है. और गाने आपको किस कैटेगरी के पसंद है?
3: सभी कैटेगरी का है. ओल्ड इज गोल्ड. अभी नए भी अपनी जगह पर ठीक है. नए गाने भी.
0: क्या बात कही आपने. तो आप कनेक्टेड रह सकते हो क्योंकि 12 से 2 तक रेट्रो रिदम का सफर होने वाला है, जहाँ पर आप सुनने वाले हैं 70s, 80s एंड 90s के गाने.
3: बहुत ठीक.
0: आप यही पर कनेक्टेड रहना. और आप लोग कहाँ पर जा रहे हो?
3: अभी हम यहाँ से अप्रवासी घाट जाएंगे, वहाँ एक विजिट करेंगे, फिर समुद्र तट जाएंगे मोशवाजी.
0: तो आप सभी को विश करती हूँ वेरी गुड डे. और ऐसे ही
3: थैंक यू. आपको भी शुभ दिन.
0: थैंक यू.
3: और बहुत बहुत धन्यवाद एमबीसी को.

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: आज का टिप है कि घर के हर रूम में एक नेचुरल फ्रेग्रेंस जरूर रखिए। फ्रेश फ्लावर्स, नींबू के छिलके या फिर लेवेंडर की खुशबू घर के माहौल को तुरंत फ्रेश और रिलैक्सिंग बना देती है। अगर आपका रूम छोटा लगता है तो फर्नीचर को भी दीवार से बिल्कुल चिपकाने के बजाय थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए। इस छोटे से डेको ट्रिक से रूम ज्यादा ओपन और एयरी महसूस होता है।
1: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: RM2 Radio Musty के साथ connected रहने के लिए thank you. आप हैं रोशनी जी और आप कह रही हैं कि बहुत अच्छे गाने अपने चलाए और आप request कर रहे हैं आखिरी गाना KGF movie का and आप अपने आप के लिए dedicate करना चाहते हैं गाना जरूर ढूंढ कर चलाएंगे आपके लिए. एंड मनीषा जी भी साथ दे रही है, नेक्स्ट ट्रैक मांग रही है अपनी बेटी अवनी और पति रोशन के लिए. छोटे से ब्रेक के बाद आपके नाम जरूर चलाएंगे गाना.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती
3: लाफवार बेलबेल काजी रिटर्न कट विनर्स
4: बेलबेल काजी दे रिटर्न कट विनर्स
5: ले किलो दे लेन पाउडर रेड कार फैमिली प्लस ब्लेंडेड आ 218 रुपी 95 et du mardi 28 juillet au jeudi 30 juillet seulement la gamme de shampoing et après-shampoing Elsev à 184 rupees 95. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
6: On est tous winners.
0: RM2
1: Radio Musty.
2: And इसी गाने के साथ टाइम हो चला है for me and Mani to say bye bye. Hope you had a great musty morning. यही पर साथ दीजिए क्योंकि next आने वाला है retro rhythm का सफर नीतू शाह के साथ.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: घड़ी मिलाते चले दिन के ठीक 12 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे गीता. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार नीतूषा, सभी को हमारा नमस्कार. राष्ट्रीय सभा में आज विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित था. जो लेशों का जानना चाहते थे कि बंदूक से जोनाथन कुयाम टू नामक व्यक्ति की मौत के संबंध में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है. जनवरी 2025 से अब तक अवैध हथियार से कितने लोगों की मौत हुई है और देश में अब तक कितने अवैध हथियार हैं, कितनी गोलियाँ बेची गई हैं और कितने लाइसेंस हैं और कितने निलंबित या रद्द कर दी गई हैं. अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने बताया कि 11 जून 2026 को क्यूपिप की पुलिस को मिडलैंड्स के एक शासे में 40 साल के इस व्यक्ति की लाश मिली. 12 जून को पोस्टमार्टम किया गया जिससे पुष्टि हुई कि गोली लगने से उसकी मौत हुई. इस मामले में 21 लोगों के साथ पूछताछ की गई और उन्हें जाने दिया गया. सीसीटीवी तस्वीरों की भी जाँच की गई. 6 जुलाई को पुलिस ने आम जनता से इस मामले में किसी भी जानकारी होने पर सामने आने की मांग की. इसके लिए इनाम भी रखा गया. 4 लोग पुलिस के पास गए, 3 के बयान लिए गए. इस मामले में जांच जारी है. एक विदेशी जांच टीम का सहयोग भी मिल रहा है. प्रधानमंत्री ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक अवैध हथियारों से संबंधित 4 मामले दर्ज किए गए हैं. आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो रहा है. 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा. इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं. आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी. ये एक व्यापक विधेयक है जिसका उद्देश्य बजट 2026

0: 2027 में घोषित कई उपायों को लागू करना है। साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से 23 सवाल पूछे जाएंगे। 11 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रवीण जगनाथ ने गजवी में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांच अधिकारियों के सवालों का जवाब दिया। उन्हें साल 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को लगभग 30 बिलियन रुपए का पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का ठेका दिए जाने से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज तड़के एफसीसी से बाहर निकलने के बाद प्रवीण जगनाथ ने पुष्टि की कि उनसे अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी पूछताछ के दौरान वे शांत और निश्चिंत रहे, हालांकि उनसे पूछे गए सवालों की जानकारी देने से उन्होंने इनकार किया। इस मामले में पूर्व अटॉर्नी जनरल मनीष गोबिंद से भी कल पूछताछ की गई। एफसीसी के दफ्तर में 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई। इस मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की स्थानीय प्रतिनिधि करीना ने स्विस तथा पूर्व मंत्री रंगानाथन पदयाची और सुदेश कालीचरण को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन यानी पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने का संदेह है। और विदेशी खबरों में दमकल कर्मी मैड्रिड और बोडो के पास जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच लोगों को एक और हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस के जिरोंद इलाके में 240 मकान नष्ट हो गए हैं। हाल में फ्रांस और स्पेन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकाला गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty.

Retro Rhythm. What a lovely gana. Well, Rafi sahab, क्या गाना है रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ों में, सागर से गहरा मासूम चेहरा, दिल तेरा दीवाना, हमारा भी दिल दीवाना हुआ जा रहा है। हेलो एवरीवन, विशिंग यू बोल अ लवली इवनिंग आफ्टरनून, क्या नहीं तो क्या हो रहा है, अभी तो बस दिन के 12:10 हो रही है। सो प्यार भरा नमस्कार, हमारा प्रणाम स्वीकार करे। मोहब्बत की बात चल पड़ी है तो दिमाग बस दो लाइन कहना चाहता है कि मोहब्बत खुद सिखा देती है किससे रिश्ता निभाना होता है, किससे दूरी बनानी है, किसे दिल में बसाना है। आप तो हो हमारे अपने, तो हमेशा से हमारे दिल में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। व्हाटएवर यू माइट बी, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294 आपको ले चले हैं डाउन मेमोरी लेन, नॉस्टैल्जिया लेन में। सो आपके मैसेजेस का इंतजार, आपके पैगामों का, अपनों के नाम इंतजार है हमें।

0: जमाने तो हम भी हुआ करते थे भाई, आज भी है 90s के गाने। स्पेशली आज है बर्थडे, अगर आपको याद नहीं तो आयशा जुल्का, बोर्न 20th July 1972, और उनकी जो मूवीज़ है हमको याद आती हैं, जो जीता वही सिकंदर, कुर्बान, मेहरबान, बलमा, वक्त हमारा है, जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे, लवली गाने, एंड होते होते प्यार हो गया, जय किशन मासूम, एंड बस अच्छी अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो चलिए इस एक्ट्रेस को हमारी तरफ से, उनके सभी फैंस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भी मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: यलेश शाम इन फैमिली फ्रॉम सुरीनाम। माय डियर यलेश, अगर हो सके तो आप किसी और गाने की फरमाइश की, अगर बार बार एक ही गाने की फरमाइश करोगे तो नॉट हैपनिंग ना, तो आई एम श्योर और भी गाने हैं बहुत सारे आपके लिए। ज्योतिष तो बिना गस्से आशनी रेखा सुरेखा एंड माधव फैमिली, आप आज फैमिली फ्रॉम वोस्ट बॉस, साथ देने के लिए थैंक यू।

Retro rhythm. Lovely, soothing, romantic, evergreen songs. So that was Mamta film ka Sadabahar gana. 12:26. Kafi messages hai haan. 5499-1294. Yahan par 25th wedding anniversary aapke liye hai, Mr. Vishal. Aapki pyari patni Karuna Maruti. Aur aap Belair rehte, yani ki Belair rehte hai. Aur kal apni shadi ki salgirah manayenge. In advance, aap dono ko hardik shubhkamnaye. Aapki jodi hamesha salamat rahe. प्रणाम भाई सूरज शर्मा साजादा बेटा निशाल एंड सबको विश कर रही है पायस गुरु पूर्णिमा तो चलिए अपने गुरु को सम्मान कीजिएगा उनको इज्जत दीजिएगा हमेशा नमस्ते नीतू नमस्ते विद्या आप हो फ्रॉम पेचित हो बढ़िया गाना चल रही है थैंक यू सो मच मन खुश हम भी खुश तो नेक्स्ट गाना आपके लिए आपके पूरे परिवार के नाम नमस्ते जी आज मेरी बेटी किरण का जन्मदिन ओके कल था एक सुंदर सा गाना उनके लिए आपकी तरफ से मामा कमला आपको फ्रॉम पुत्र दो विलाश आपके पूरे परिवार के नाम ये तो इट्स माय प्लेजर माय डियर नमस्ते जी

आज उजल भाई महेंद्र और आप हुपालमा कर्तुबोन से आशा करती हूँ कि आप ही स्वस्थ और मस्त हैं। नेक्स्ट गाना मोनिका, ओ माय डार्लिंग, क्या बात है, आप तो एकदम जोश में आ गए हैं, बस थोड़ी देर में चलाएंगे। एंड बोनापेची शुभहार आपको ललिता एंड जीतन फैमिली, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। तैयब साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक?

0: रेट्रो रिदम।
1: मजा आ जाता है जब 90s की दुनिया में भी आपको ले चलते हैं। दैट वाज सनम फिल्म का एवरग्रीन सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स कविता कृष्णमूर्ति एंड अभिजीत की आवाजों में। कसम से बड़ा मजा आ रहा है। 12:33 तो मिनट होने वाले हैं और यहाँ पर साथ निभाते हुए आपके भी मैसेजेस ऑन 5499-1294। मिस्टर देव, आप हो फ्रॉम पेरिस, आपकी लवली पत्नी के नाम आपने गाने की फरमाइश की है। चलिए मैं देखती हूँ कौन सा गाना है। एंड सुपर माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच कुमार। देबीचन फैमिली है फ्रॉम पेरिबेयर। कैसी हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है सुरेखा, आप कैसी हैं? कैथ कोको वाले सब ठीक ठाक? रामधन परिवार के नाम एक गाना। गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती टीम, आज मेरी भांजी धानवी का जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। धनेश्वर जी, आपकी तरफ से पत्नी सुनीता, साथ में रानी, पिंकी, दबे दोस्त परिवार, कावलिसो एंड फोकिर फैमिली, थैंक यू। तो हम कहेंगे आपको जी हमारे हम सफर बनने के लिए। तो बस एंजॉय कीजिए। अगला गाना आपके लिए भी कैथोबोन पालमा से है, मिस्टर बाबू अनतवा। तो चलिए पूरे परिवार के नाम। आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, गम भी आए तो उसको मुस्कुराकर चैलेंजेस के साथ अपनाते हुए आगे बढ़ते चलें।

0: रेट्रो रिदम।
1: बाप रे बाप, मदन मोहन का संगीत, दैट वाज वो कौन थी, वो क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी मिस्ट्री थ्रिलर। और इसमें जितने भी गाने रहे मदन साहब, क्या बात है, आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि लग जा गले इस मूवी में पहले इसको रिजेक्ट कर दिया गया था बाय राज खोसला द डायरेक्टर, और बाकी जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा ना ये गाना तो इस फिल्म में नहीं ही आएगा। लेकिन बाद में जो संगीतकार रहे मदन मोहन, उन्होंने उनको कन्विंस किया और ये गाना बन गया टाइमलेस क्लासिक। एक और गीत है नैना बरसे, बाप रे, अगर शुरू कर दूं ना तो गाना पूरा कर दूंगी मैं। और इस गाने को लता जी ने गाया है, लेकिन क्या आपको पता है जब शूटिंग हो रही थी तो खुद मदन मोहन साहब ने गाया। जी हाँ, द ट्रैक है, मदन मोहन साहब ने गाया। और जब शूटिंग हो रही थी इस गाने की, तब साधना ने लिप सिंक की, यानी कि जो कहते हैं ना लिप, होठों से वो गा रही थी, प्लेबैक कर रही थी। देन बाद में, क्योंकि लता जी अब्रॉड थी, बाहर गई हुई थी, और बाद में इस गीत को जो फाइनल वर्जन रहा लता जी ने डब किया। ऐसे ही बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं, हर गीत के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। आप भी अपनी कहानी सुना सकते हो। हाँ, एक फोन कॉल के जरिए। थैंक यू सो मच। कैसी है नीतू? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नेक्स्ट गाना प्लीज, मेरे पति लालदेव के नाम, मामा शारदा, बगन, दीदी अनीता, बिमल, किरोधर परिवार, खास आपके लिए माय डियर सुया बिहारी, कुंगुमा से। थैंक यू सो मच, हम आपको कहेंगे। तो बस ऐसे ही साथ निभाते रहिएगा 2 बजे तक। नेक्स्ट गाना आपके लिए इन द वॉइस ऑफ कुमार सानू तो नहीं है, लेकिन बाद में, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, स्पेशली धनी जी, बाशेगी से आपने कहा वो कौन थी वाला गाना छोड़ कर तेरे प्यार का दामन आपको बहुत ही पसंद आया। तो बस ऐसे ही गाने आपके तक पहुंचाएंगे जो आपके दिल को छू ले।

सुनाना तो चाहती थी कोई और गाना जिसमें किशोर कुमार की भी आवाज है, लेकिन दिस वन आल्सो हैज नाइस गाना, एस डी बर्मन वाला गाना और सागर फिल्म से लिया गया, व्हाट अ लवली वॉइस एस पी बाला सुब्रमण्यन की। तो बस सच बात यही है कि आपका यहाँ पर आपका स्वागत है ऑन 5499 1294, इट्स योर रेट्रो रिदम ऑन रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: आपके अंगना के साथ साथ आपके कंगना भी एकदम सुरक्षित रही तो हम कामना करते हैं, स्पेशली आपके लिए माई डियर रेशमा और आशीष। आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है, सो शादी की सालगिरह मुबारक हो। बेस्ट विशेस, जोड़ी सलामत रहे। एज यूजुअल आपकी बेटियां हैं मिष्टी एंड हिमाक्षी एंड पूरे परिवार डियर वंस की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये गाना हमें ले जाएगा 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Ek baja hai. संक्षिप्त समाचार आपसे याचना नमस्कार आपको
4: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार जोनाथन कुयामतू की हत्या की जांच जारी है आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात की पुष्टि की वे विपक्ष नेता जुलेशोंगा के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे जो बंदूक रखने की प्रक्रिया पर आधारित रहा जोनाथन कुयामतू की मौत 11 जून को हुई उन्हें गोली लगी थी प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई की शुरुआत में मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों की जो मांग की थी इसके बाद चार लोग सामने आए हैं इनमें से तीन की गवाही ली जा चुकी है उन्होंने आगे बताया कि 27 जुलाई तक 4,287 परमिट्स जारी किए गए और 8 लाइसेंस रद्द किए गए उन्होंने बताया कि मॉरिशस में बंदूक के तीन आयातक हैं यानी इंपोर्टर्स और सख्त मापदंडों का पालन करते हुए ही उन्हें इसकी मंजूरी दी गई है पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ के साथ कल 11 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ की गई 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ईंधन के आयात के लिए 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत उनसे पूछताछ की गई अपने वकील हाफ गुलबुल की मौजूदगी में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए इसी मामले में पूर्व अटर्नी जनरल मनीष गोविंद के साथ भी 60 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ चली सालों दो में का 43वां संस्करण 22 अगस्त तक महात्मा गांधी संस्थान मोका के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में लग रहा है चित्रकला से लेकर फोटोग्राफी तक वहां कई मोशन कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित हैं आप जाकर ये सब निहार पाएंगे विदेश में माड्रिड और बोर्डो में दमकल कर्मी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश में है गर्मी की वजह से इस आगजनी पर काबू पाना मुश्किल हो गया है 240 मकान जलकर राख हो गए इस बीच पारा बढ़ता जा रहा है स्पेन की राजधानी में इस हफ्ते तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार Rue Guiquel, Mont-Selman Baptiste, Okuleme, Rue Guiquel, Mont-Selman Baptiste, Okuleme, Sata, Sisal, qui était 7 years old, qui, Shrimati, Amoudon, Karupunen, Shrimati, Amoudon, Karupunen, Pedashinam, Sukurmani, Aljomina, qui nam, Sisia, Dajani, Jatiti, Unkimriti, Hogai, Herti, कल दिन के एक बजे उनके मकान रुगी कैल मोसलमान बाचिस्टो कुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमिशन टुमोरो at 1 p.m.

0: शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2, Radio Musti.

शाम तो अभी हुई है नहीं है, बस दिन के 1:08 डेफिनेटली हो गई है। थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए, और आपके मैसेजेस भी आ रही हैं ऑन 5499 1294। वैसे हमने सुना जोरों की बारिश हो रही है, हाँ ऑलराइट, तो चलिए ऐसे मौसम में तो मस्त गाने चलने ही चाहिए 5499 1294 पर। और यहाँ पर रिम झिम बारिश गिर रही है, टिप टिप टिप टिप बारिश गिर रही है। तो सैकात नफ नफ पर आपके मैसेजेस, व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे आपके लवली प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये गाना बनता डेफिनेटली है स्पेशली आपके लिए रोशनी एंड सभी प्यार करने वालों के नाम। हे कैसे हैं सीता और गीता, बोलू राम परिवार शातो बिनागस से।

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: ओल्ड इज गोल्ड और ये जो गाने हैं कभी पुराने होंगे भी नहीं। 1:13 होने वाले हैं। मिस्टर डेव, कब से आपने गाने की फरमाइश की है? ऑल द वे फ्रॉम पेरिस हियर यू आर। ये है द लव, माय लव, द नहीं, माय लव फिल्म से लिया गया मुकेश की आवाज में। जिक्र होता है यहाँ पर इन सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स की, मेलोडीज की, सभी लिरिक्स जो बोर हुआ करते थे। वाह क्या बात है।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: हम मजबूर है भाई, मौसम का ही असर है. यहाँ पर मौसम बदल गया है तो थोड़ा सा मूड भी बदल देते हैं यार. कयाग्नी गुदित नारायण टिप टिप बरसा, पानी बरस रही है. प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आप रास्ते पर हैं, ड्राइव कर रही हैं, प्लीज कल्ले कल्ले हौले हौले जैसे कहते हैं. एंड 5499 1294 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच.

0: RM2 Radio Musti.
1: आप एंजॉय करते रहे इन गानों को भी, द 60s, 70s, 80s या फिर 90s, 1:21 और यहाँ पर आशा जी और रफी साहब की आवाज़ों में एक और खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी शतरंज, स्पेशली आपके लिए यहाँ पर हम चला रहे हैं। श्वेता है माय डियर, कैसी हैं? क्यूपिप में इज इट रेनिंग, बारिश हो रही है कि नहीं? 5499-1294 पर आप ही हमें बता दीजिए। क्या पता जो बाकी रोड यूजर्स हैं, निकलने वाले हैं घर से, चाहे वो आप अपने व्हीकल में होंगे या फिर बस में चलकर, बीट जैसे भी हो, प्रिकॉशन तो इज बेटर दैन क्यू ना। सो आप अपनी छाता जो है लेकर चले और मस्त गानों को एंजॉय करते चले।

0: भाई 2 बजे तक तो हमारा और आपका साथ रहता है, लेकिन ओनली फॉर द शो। हाँ, लेकिन ये जो दोस्ती है, ये जो अपनापन है, ये जो रिश्ता बन जाता है, वो उम्र भर तक रहता है।
1: रेट्रो रिदम।
0: राइट, 1:26 मिनट। इस बारिश के मौसम में रोमांटिक सॉन्ग्स ओनली फॉर यू। गाना जिंदगी में प्यार करना सीख लो भाई, और सबको सिखाते रहो। ये सुबह देना, हाँ सुबह, अभी तो दिन हुआ है। आप कल सुनना चाहते हैं ये गाना? हम कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड। आप है कौन, चले देखती हूँ यहाँ पर। देवी जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। प्यार करना आप सीख लीजिएगा। और अनिता जी कहते हैं प्लीज़, आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, माने कि फ्लिक ऑफ फ्लाक में उरी बाबा, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और नेक्स्ट गाना आपके नाम चलाते हैं यहाँ पर यास्मिना ऑफ काथुबोन। क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, आपको सर्दी जुकाम फीवर, ओहो आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आराम करो, खाओ, मस्त रहो और दवाइयाँ वगैरह आप लेते चलो। एंड अगर आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहोगे ना, तो डेफिनेटली ये जो फीवर है एकदम छर्र फुर्र हो जाएंगे। सो यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू, हंसते रहो। एंड आपके बच्चे हैं कातो, हाजू, निजू एंड योर डियर वंस। लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा आशवी राम रतन। इस समय आप मॉरिशस से बाहर सात समुंदर पार, समुंदर में ही हैं क्योंकि आप क्रूज में काम करते हो, लेकिन आपकी मामा जो हैं आपको बहुत ही प्यार करती हैं, मिस करती हैं एंड ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। मामा रुदी, पापा अशोक, आपकी बहनें ईशा, अंशु एंड डेफिनेटली राम रतन फैमिली फ्रॉम पालमा एंड इधर रेडियो मस्ती फैमिली आपके नाम। एंड लेट मी विश हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, 35th वेडिंग एनिवर्सरी आपको। भाभी है राधा, साथ में आपके पति हैं राज, और आप कहती हैं सच में ही उनके साथ जब तक आप रह रही है ना, राज ही राज कर रही है, ये हुई ना बात, आपकी जोड़ी सलामत रहे। एंड बहुत सारी बधाइयां आपके पूरे परिवार, आपके बेटे हैं नक्शा, बिशक, साथ में स्नेहा आपकी बहू, दादा और भाई किशोर, कैसे बा, सब ठीक, आपको भी नमस्ते। एंड आपकी बहनें हैं शीतल, साथ में सैंडी, और आपकी बेटी हैं देपरानी, सब परिवार एंड डियर वंस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बस दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे फॉर दिस लवली सिलेक्शन जो आपके रिक्वेस्ट आ रही है। ये वाला फ्रॉम द मूवी मेरा साया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स एवर, लता जी का गाया हुआ। ये गाना आप इंदिरा रामचंद्र फ्रॉम रोजबेल अपने लेट पति की याद में उनको आप लाइक नजर करना चाहती हैं, तो बस एंजॉय कीजिए एंड कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन 5499 1294।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: कभी कभी इन गानों को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी दिल खुश हो जाता है। बस ये जो एहसास है, ये जो फीलिंग्स है, इनको आप महसूस कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं माय डियर फ्रेंड, आप हो कौन? शमशाद बेगम एंड बंधु परिवार फ्रॉम थ्रियोली। बस ऐसे रोमांटिक मौसम में ये खूबसूरत सा गाना सुनते चले किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: प्यारी सी रेखा प्यारे से बेटे अंश के नाम पूरे परिवार एंड फ्रेंड्स के लिए हैप्पी बर्थडे आपको सलोनी नेम बरन ये आपके पति राज बेटे हैं नितेश सात बहनें और आपके दो भाई सभी डियर वंस की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं ये अगला गाना आपके लिए भी है मामा नीता पापा सुबी उन्होंने आपसे कहा है कि प्लीज नीतू को बोलो ये गाना मेरे नाम चलाए कोई भी गाना लेकिन ये गाना बहुत ही मस्त है चटरधारी परिवार खास आपके लिए प्यारी सी ईशा एंजॉय

तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है ये गाना गुजार टू समवन वेरी स्पेशल फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल नाम तो नहीं लिखा लेकिन हाँ कहा कि प्लीज़ ये मैसेज डेडिकेट करो गाना डेडिकेट कर दो तो आपने समझ गया होगा आपने समझ लिया होगा कि ये गाना किसके नाम

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: That's for sure कि आप तो जान से प्यारे हो और हमेशा रहेंगे. Time to say bye bye और जाते जाते ये अंतिम गाना आपके नाम और विमला जी पूरे परिवार के लिए. ताराचंद परिवार है ना, और शादी के बाद सब थके मांदे हुए हैं तो सुस्ती लेने गए हैं, आराम कर रहे हैं और आप इस वक्त सी साइड पर हैं. सो एंजॉय और आपकी शाम एकदम खूबसूरत हो. मिलते हैं अब थर्सडे आफ्टरनून को 12 से 2 के बीच और हमारे बाद बॉम्बे टॉकीज के साथ परी आ गई है. टेक केयर, बाय बाय. एंड ललिता आप ही एंजॉय कीजिए अपनी गर्मा गर्म इलायची वाली चाय. आहा हा हा.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। जोनाथन कुयामतू की हत्या की जांच जारी है। आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात की पुष्टि की। वे विपक्ष नेता जोले जोंगा के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, जो बंदूक रखने की प्रक्रिया पर आधारित था। जोनाथन कुयामतू की मौत 11 जून को हुई, उन्हें गोली लगी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई की शुरुआत में मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों की मांग की थी, जिसके बाद चार लोग सामने आए। इनमें से तीन की गवाहियां ली जा चुकी हैं और आठ, और उन्होंने आगे भी बताया कि 27 जुलाई तक 4,287 परमिट्स जारी किए गए और 8 लाइसेंस रद्द किए गए। उन्होंने बताया कि मॉरिशस में बंदूक के 3 आयातक हैं और सख्त मापदंडों का पालन करके ही उन्हें इसकी मंजूरी दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ के साथ कल 11 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ईंधन के आयात के लिए 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत उनसे पूछताछ की गई। अपने वकील राउफ गुलबुल की मौजूदगी में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। इसी मामले में पूर्व अटर्नी जनरल मनीष गोबिंद के साथ भी 7 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ चली। सालों दो मे का 43वां संस्करण 22 अगस्त तक महात्मा गांधी संस्थान मोका के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में लग रहा है। हर साल की तरह चित्रकला से लेकर फोटोग्राफी तक वहां कई मॉरिशन कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित हैं, जो आप देख पाएंगे। विदेश में मैड्रिड और बोर्डो में दमकलकर्मी जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। गर्मी की वजह से इस आग जनी पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। 240 मकान जलकर राख हो गए हैं। इस बीच पारा बढ़ता जा रहा है। स्पेन की राजधानी में इस हफ्ते तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Cheese.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: So, well, friends, 2:06, Tuesday afternoon, 28th of July. I do hope you all are having a nice time. वैसे आज मौसम नॉट दैट ऑसम, लेकिन ऐसे मौसम में आप हमारा साथ दे रहे हैं. सो मैं हूं परी आपके साथ, लेकर आई हूं आपका अपना बॉम्बे टॉकीज. 2 से लेकर 4 बजे तक बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाने हम हैं ऑल सेट ऑल रेडी. गाना था धीमे धीमे और हफ्ता जो है वो भी धीमे धीमे आगे बढ़ता है. जब वीकेंड्स आते हैं तो फटाफट टाइम निकल जाता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे धीमे धीमे धीमे ऐसे ही आगे बढ़ता है टाइम. लेकिन नॉट टू वरी, हम है ना आपके धीमे धीमे टाइम को भी हम एंटरटेनिंग टाइम जरूर बनाए. साथ देने के लिए शुक्रिया हमारे सभी दोस्तों का जिन्होंने चुना है RM2 रेडियो मस्ती. सो यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा म्यूजिक, सब कुछ होने वाला है इन परफेक्ट क्वांटिटी आपके लिए, और आप हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों. सो चलिए, नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294. अभी के लिए आफ्टरनून मूड को सेट करने के लिए वी हैव खान साहब की आवाज फ्रॉम द फिल्म धुरंधर. वी हैव दिस गाना. चलिए दोस्तों, आफ्टरनून टाइम है और आपको हम एंटरटेन करने आए हैं. बी टाउन की खबरें थोड़ी ही देर में पहुंचाएंगे आप तक. तब तक के लिए एंजॉय करें गुड म्यूजिक ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: म्यूजिक बाय शाश्वत सचदेव एंड आवाज खान साहब की ये था एक गाना आपके लिए फ्रॉम द फिल्म धुरंधर। और चलिए दोस्तों आज की इस ट्यूसडे आफ्टरनून को खास एंड स्पेशल बनाएंगे आपके लिए बिकॉज लेकर आए हैं एक गेम जहां पर आप खेले एमबीसी के साथ और साथ में राजस्थान वर्क्स एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस स्टैंड अ चांस टू विन 4 एंट्री टिकट्स एंड एक फूड कूपन फॉर जेंस अ लिटिल इंडिया शाही थाली एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC होने वाला है 12th ऑफ अगस्त 2026 से 16th ऑफ अगस्त 2026 तक एट SBICC प्राय सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक। सो चलिए दोस्तों

0: तो यहां पर और भी डिटेल्स आपको देंगे लेकिन अगर आप ये फूड कूपन और एंट्री टिकट्स जीतना चाहते हैं तो आपके लिए वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन YRF यूनिवर्स की एक फिल्म जो काफी चर्चाओं में थी जिसका नाम है अल्फा उसमें नजर आई है आलिया भट्ट और उनके साथ एक और एक्ट्रेस ने उनका साथ दिया है आपको हमें उस एक्ट्रेस का नाम बताना है बात कर रहे हैं फिल्म अल्फा की और जिसमें नजर आई हैं आलिया भट्ट और उनके साथ एक और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस उनका नाम क्या है सेंड अस योर राइट आंसर्स 5499124 पर 5499124 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ अल्फा फिल्म में आलिया भट्ट का साथ और कौन सी एक्ट्रेस ने निभाया है वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन अ मैजिकल नंबर ऑल द बेस्ट
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, question time. आपसे पूछा था सवाल कि Alpha फिल्म में आलिया भट्ट के साथ दूसरी जो एक्ट्रेस नजर आई थी उनका नाम क्या है? And the right answer is Sharvari Wagh. यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. Actually सारे सही जवाब मिले तो हमें तो पता है कि Bollywood का कीड़ा आप में भी बिल्कुल उतना ही है जितना हमारे के अंदर है. So well, दोस्तों अभी के लिए दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब और लकी ड्रॉ के बाद हमारी लकी विनर बनी है परिणाम महादेवा. आप है ट्रोले से. So congratulations. चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और बन गई हैं हमारी लकी विनर. सो आपके लिए हम चलाएंगे Sharvari Wagh का ये फेमस गाना. लेकिन इससे पहले आपके लिए तालियां तो बनती है. सो वेल परिणा, आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब. ट्रोली से आई हैं आप हमारा साथ देने. सो लेट मी टेल यू, खेला आपने एमबीसी के साथ एंड राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है आपने 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. 12th ऑफ अगस्त से लेकर 16th ऑफ अगस्त तक ये चलने वाला है एट SBICC पाए सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक, जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शो, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, साथ में होने वाला है स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैनमा शो होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं एंड फूड फेस्टिवल एज वेल. सो ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड एंड आपने जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड अ कूपन फॉर अ शाही थाली एट जैन्स लिटिल इंडिया. तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे आपको. आप जा सकती हैं इस फूड फेस्टिवल में और एंजॉय कर सकती हैं अपने इनाम को. अभी के लिए तो साथ देते रहिए एंड वंस अगेन हमारी विनर परिणा महादेवा ट्रियोले से आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन. साथ देने के लिए शुक्रिया. कुछ प्यारे गानों के साथ आपको एंटरटेन कर रहे हैं दोस्तों और जैसे हम हमेशा कहते हैं जीतने के मौके और भी मिलेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ. फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना और इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ और ये है आपका अपना बॉलीवुड रेडियो स्टेशन यस RM2 रेडियो मस्ती. साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों. कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को हम लुभा रहे हैं और जैसे हमने कहा दिस वन गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ Sharvari Wagh.

0: Oldies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: So that was taken from the film Musafir Cafe. OTT पर रिलीज हो गई है ये और आपको बता दी that विक्रांत मसी इस फिल्म में नजर आए हैं and it's a beautiful love story. So अगर आपने नहीं देखी है इस फिल्म को देखिए जरूर सीरीज है और इसे आप देख सकते हैं on OTT. So दोस्तों अभी के लिए हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस श्रीदेवी और उनकी फिल्म मोम जो 2017 में आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब करीब 9 साल बाद इसका सीक्वल बनने जा रहा है जिसको लेकर बड़ा अपडेट सामने ने आया है. खुशी कपूर अब फिल्म मोम 2 में लीड रोल निभाने जा रही है. ये 2017 की हिट फिल्म मोम का सीक्वल है और इसे नवंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है. इस फिल्म को उनके पिता बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी शूटिंग नोएडा और ग्रीस में हुई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक मोम 2 का कनेक्शन

0: क्वेश्चन श्रीदेवी के उस यादगार किरदार से जुड़ा होगा जिसने उन्हें खास पहचान दिलाई थी। मोम श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी और ऐसे में ये प्रोजेक्ट खुशी कपूर के लिए काफी इमोशनल और खास माना जा रहा है क्योंकि वो अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाती नजर आएगी। खुशी कपूर ने द आर्ची से डेब्यू किया था लेकिन नादानिया और लव यापा जैसे प्रोजेक्ट्स को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे में मोम 2 उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की शुरुआती फुटेज देखने वाले एक सूत्र ने खुशी की एक्टिंग में काफी सुधार बताया है और उन्होंने कहा है कि खुशी इस बार ज्यादा इमोशनल डेप्थ के साथ नजर आ रही है और कहीं कहीं श्रीदेवी की झलक भी देखने को मिल रही है।
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.
0: So well friends, बी डाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं विद सम लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स। सो आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। 2:34 हो चुके हैं ट्यूजडे आफ्टरनून। इट्स योर बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं परी आपके साथ 4 PM। अभी के लिए हीर एंड गुरु रंधावा की आवाजें, एक गाना जो आजकल चल रहा है, वेरी पॉपुलर। एंजॉय दिस वन।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। जोनाथन कुयामतू की हत्या की जांच जारी है। आज राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात की पुष्टि की। वे विपक्ष नेता जोले जोंगाव के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, जो बंदूक रखने की प्रक्रिया पर आधारित था। जोनाथन कुयामतू की मौत 11 जून को हुई। उन्हें गोली लगी थी। उनका शव उनकी गाड़ी के बगल में जमीन पर पड़ा मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई की शुरुआत में मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों की मांग की थी, जिसके बाद चार लोग सामने आए। इनमें से तीन की गवाही ली जा चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ के साथ कल 11 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ईंधन के आयात तक के लिए 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत उनसे अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। अपने वकील हाफ गुलबुल की मौजूदगी में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और इसी मामले में पूर्व अटर्नी जनरल मनीष गोबिन के साथ भी 60 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ चली। विदेश समाचारों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इबोला वायरस के खिलाफ एक कारगर टीके की सफलता का ऐलान किया है। सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसे मरीज पर किया गया जो खुद ही इसके लिए राजी हुआ था। इससे तेजी से कोंगो और अफ्रीका के अन्य देशों में फैल रही इस घातक बीमारी के खिलाफ संघर्ष में एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव पार हुआ है। अभी तक इस महामारी ने कोंगो में ही करीब 1500 जाने ली हैं। और मैड्रिड तथा बोर्डो में दमकलकर्मी जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। गर्मी और सूखे की वजह से इस आगजनी पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। 240 मकान जलकर राख हो गए। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। SSR रोड Saint-François Cap Malheureux में चवालीस साल के 44 years old के श्री रणधीर मगा जो रणधीर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और दिवंगत नारायण दत्त मगा के बेटे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ मंजू मगा के मकान SSR रोड Saint-François Cap Malheureux से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। कालीमाई रोड लालमाटी में 68 साल के 68 years old की मिसिस बीबी रिहाना जुमन पैदाशी नाम इमाम जी और जो रिहाना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई है। उनका जनाजा आज शाम 7:45 बजे सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए उनके शौहर हसन जुमन के घर से कालीमाई रोड लालमाटी से उठा

0: आकर अलबेत मस्जिद बिलविद्यालय जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए बोबा का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुडे एट 6:45 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

सो वेलकम दोस्तों, 3:08 हो गए हैं ट्यूसडे आफ्टरनून 28th of July. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं परी आपके साथ टिल 4 PM एंड सुनिधि चौहान दिव्या कुमार की आवाज है ये गाना आप सभी के लिए टू गेट यू इन द मूड. दिल दिल दिल दिल दिल दिल यस आपके लिए दिल से गाने चला रहे हैं एंड दिस इज अ स्पेशल वन हमारे सभी लिसनर्स के नाम. एक दीवाने की दीवानी है उसी फिल्म का ये गाना. एंजॉय दिस वन.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ अपने लिंकअप को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सोमी अली एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो करीब दो दशक से लापता बॉलीवुड एक्टर की तलाश कर रही है। सोमी अली ने दरअसल राज किरण को लेकर एक बात की जो रहस्यमय तरीके से लापता है और इस बात को 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और सोमी अली ने इसे लेकर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सोमी अली ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इसमें दावा किया है कि वो करीब पिछले 16 सालों से कथित तौर पर लापता बॉलीवुड एक्टर राज किरण की तलाश में जुटी हुई है और उन्होंने कुछ दस्तावेजों की तस्वीरें भी पोस्ट की है और साथ ही बताया कि वो एक्टर की तलाश करना बंद नहीं करेगी और उन्होंने वादा किया था ऋषि कपूर से कि वो उनके दोस्त को ढूंढ कर रहेगी और इसीलिए वो ये तलाश कभी नहीं रोकेगी। सोमी अली ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा दैट चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर जब इस दुनिया में थे तब एक शूटिंग के दौरान मैंने उनसे वादा किया था कि राज किरण की तलाश कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा 16वां साल है और मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिले पतों के जरिए कई दरवाजे खटखटाए और न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट मिला जहाँ फ्रंट डेस्क पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने राज किरण को कभी नहीं देखा लेकिन उनके भाई गोविंद, उनकी पत्नी जूडी और उनकी बेटी 11 साल तक उस अपार्टमेंट में रहे थे और उनके परिवार के हर सदस्य से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और उन्होंने कुछ फोटोज भी शेयर की है और साथ ही उन्होंने लिखा है दैट आई एम ट्राइंग टू लोकेट हिम, अगर किसी के पास कोई भी खबर है इनके पते को लेकर चलते या फिर कहीं किसी ने इनको देखा है तो प्लीज इस बात को शेयर करें। और ये तो हम जानते हैं दैट बहुत सारी फिल्मों में वो नजर आए थे, 70s की फिल्मों में हमने देखा था राज किरण को और कर्ज फिल्म जो उन्होंने की थी ऋषि कपूर के साथ और इस फिल्म के बाद उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी लेकिन एक टाइम के बाद राज किरण जो है वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए और उसके बाद किसी बॉलीवुड एक्टर ने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की लेकिन चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर ने इस कोशिश को कभी नहीं छोड़ा और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उनसे जो वादा किया था सोमी अली ने अभी वो इस वादे को पूरे करने की कोशिश कर रही है यानी कि इट हैज बीन 16 years एंड शी इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट के राज किरण कहाँ पर है। लास्ट उन्हें देखा गया था US में लेकिन अब वो कहाँ है वो किसी को भी खबर नहीं है। तो चलिए अभी के लिए तो एक अच्छा काम वो कर रही हैं और उम्मीद करते हैं कि राज किरण की कोई खबर अगर मिले तो उनके जो फैंस हैं वो भी हैप्पी हैप्पी हो जाए क्योंकि काफी समय से उनके बारे में बस सुनते आ रही हैं लेकिन उनके चलते कोई भी खबर आज तक किसी को नहीं मिली। सो वेल फ्रेंड्स, बी डाउन की खबर और कभी कभार कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंच जाती है एंड यस

राज किरण और उनके सभी फैंस. वी डोंट नो दैट अगर आपने उनकी फिल्मों को देखा है तो ज़्यादा फिल्मों में वो नज़र नहीं आए थे, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने की उनके किरदार काफ़ी यादगार रहे. सो अभी के लिए तो बस गुड विशेज टू सोमी अली कि वो ढूंढ सके राज किरण को और शायद कुछ और लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए. अभी के लिए बी टाउन की खबरों के साथ साथ यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एंड दैट्स टेकन फ्रॉम द फिल्म धमाल 4. दैट्स द सारी सॉन्ग जो आजकल काफी पॉपुलर चल रहा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय दिस वन.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, ladies and gentlemen, it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते आपके कुछ messages, dedications जो आपने इतने प्यार से पहुंचाए हैं on 5499-1294. So जो अगला गाना है इसे हम dedicate करेंगे for Rishi Bidesi और dedicate करना चाहते हैं गाना for everyone who's working in the rain while listening to Radio Masti. Equally goes out for Moody girlfriend of Bombo and सभी दोस्तों के नाम. That's really sweet, Rishi ji. चलिए गाना आपके नाम and equally goes out for all your loved ones. साथ देने के लिए शुक्रिया. डाविसन लाल माटी से हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो अगला गाना होगा आपके नाम और अब्दुल एंड सायरा बानो. Enjoying songs on the waves of Radio Masti. So thank you so much साथ देने के लिए. कहते हैं अभी थोड़ी धूप हुई है, सुबह से क्लाउडी था एंड थैंक्स फॉर द सिलेक्शन. और एक अगला गाना हम जरूर डेडिकेट करेंगे फॉर आ लवली फॉर अ गॉर्जियस रोशनी जो हमेशा साथ देती है. सो थैंक यू सो मच रोशनी, साथ दे रही हैं आप. गाना होगा आपके नाम. साथ ही कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू माई स्टूडेंट छाया और उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. बेस्ट विशेज ये है फ्रॉम सभी कलीग्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स प्रिया, पिंकी, मनीता, रिया, सोनिया, रूही, पल्लवी है एंड ललिता जी और सभी जीतन परिवार लावांचे से विश करना चाहती हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. और साथ ही मैसेज है मिस यू ऑल गाइज, लव यू सो सो मच. साथ ही नेक्स्ट ट्रैक होगा फॉर बेटी अवनी हस्बैंड रोशन एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम मनीषा. साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों. छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक, सुपर रोमांटिक गाना एंड दैट्स इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक. लेकर आएंगे योर बॉम्बे टॉकीज. अभी के लिए आ रही है गिनीशा लेकर योर अवतार वाइब्स. स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती.

0: खूबसूरत गानों का सिलसिला हमेशा ही चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4 पीएम।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: Radio Musti.
1: North, South,
3: 103.5.
1: East, West,
3: 96.4.
1: Center,
3: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
5: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार और याचना के साथ। नमस्कार।
6: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। जोनाथन कुयामतू की हत्या की जांच जारी है। आज राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात की पुष्टि की। वे विपक्ष नेता जुलेशोंगा के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे जो बंदूक रखने की प्रक्रिया पर आधारित था। जोनाथन कुयामतू की मौत 11 जून को हुई। उन्हें

0: गोली लगी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई की शुरुआत में मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों की मांग की थी, जिसके बाद चार लोग सामने आए। इनमें से तीन की गवाही ली जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि 27 जुलाई तक 4,287 लाइसेंस जारी किए गए, जबकि 8 लाइसेंस रद्द किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि मॉरिशस में बंदूक के तीन आयातक यानी इम्पोर्टर्स हैं और सख्त मापदंडों का पालन करके ही उन्हें इसकी मंजूरी दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ के साथ कल 11 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ईंधन के आयात के लिए 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में एफसीसी की जांच के तहत उनसे पूछताछ की गई। अपने वकील खौफ गुलबुल की मौजूदगी में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। इसी मामले में पूर्व अटर्नी जनरल मनीष गोबिन के साथ भी 7 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ चली। विदेशी खबरों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इबोला वायरस के खिलाफ एक कारगर टीके की सफलता का ऐलान किया। सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसे मरीज पर किया गया जो खुद ही इसके लिए राजी हुआ है। इसी से तेजी से कंगो और अफ्रीका के अन्य देशों में फैल रही इस घातक बीमारी के खिलाफ संघर्ष में एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया जा रहा है। अभी तक इस महामारी ने कंगो में करीब 1500 जानें ली हैं। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। कालीमाई रोड लालमाटी में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड की मिसेज बीबी रिहाना जुमन पैदाशी नाम इमाम जी और जो रिहाना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम 7:45 उनके शौहर हसैन जुमन के मकान कालीमाई रोड लालमाटी से उठाकर सबसे पहले नमाजी जनाजे के लिए बेलवेडिया की अलीबेट मस्जिद और फिर दफनाने के लिए बुबवाह का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 7:15 PM। अनफील्ड रोड श्वाजी में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री आत्माराम लक्ष्मण जो रुने के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:00 उनके बेटे श्रीराम लक्ष्मण के मकान अनफील्ड रोड श्वाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमौत हैं। बैलों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चिंतामणि ओबिलक की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10:00 उनकी बेटी शारदा शिवनाथ कालीचरण के मकान कालीचरण लेन काहोलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: बिल्कुल जी, हमेशा रेडियो मस्ती सुनते रहें क्योंकि दैट्स योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। हां जी, हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। इट्स मी गिनीशा, जो बड़े शिद्दत से बड़े प्यार से आप लोगों का साथ देने आ जाते हैं। सो 4:11 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम। किंग चो, हाउ आर यू माय डियर लवली लिसनर्स? उम्मीद करते हैं यू आर हैविंग अ गुड डे, अ ग्रेट डे। वैसे अगर आज का दिन ज्यादा कुछ खास नहीं था तो नॉट टू वरी, क्योंकि हम आ गए हैं उसको धमाकेदार बनाने के लिए। सो वेलकम in your rough tar vibes, I'm going to take you on your filmy rides. So stay tuned and stay connected. हमारे साथ रात के 7 बजे तक आपको सुनाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे बॉलीवुड गाने, लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में एंड स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ। आपको देंगे सम लेटेस्ट हांजी ट्रैफिक अपडेट्स एंड एज वेल सम फैशन टिप्स, और कितनी सारी चीजें देंगी गिनीशा। अरे देते रहेंगे, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो है हमेशा जो साथ देते रहते हैं, हम बस आई जस्ट वॉन्ट टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए अगर ऑफिस से निकल चुके हैं, ऑलरेडी हिटिंग द रोड, सो ड्राइव केयरफुली क्योंकि आज बरसाती मौसम है। बहुत कई जगहों पे ऐसे ही बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में रोड काफी स्लिपरी होते हैं। सो धीरे धीरे हौले हौले गाड़ी चला लेना क्योंकि गिनी है ना साथ देने के लिए। बस म्यूजिक जो है आपका साथ देंगे। सो ड्राइव केयरफुली एंड अवॉइड वाटर पैचेस ऑन द रोड एंड मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग। एंड चलिए जी, ये रहा आपके नाम
1: RN2 Radio Mystique।

Such a lovely song. जी हाँ, what a beautiful combination. टिप टिप बरस रहा है ये बरसा द स्टूडियो के बाहर और आपके रेडियो पर आपके लिए ये खूबसूरत सा गाना. So I really hope that everyone is enjoying these beautiful गानों का selections जो लेकर आए हैं, खासकर आप लोगों के लिए. So my dear lovely people out there, जैसे कि आपको पता है that we really love you. You are so special हमारे लिए. आप हो ना हमारे रेडियो मस्ती फैमिली, इसलिए जब भी आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं. Always I've got something for you. और आज एक नहीं, मेरे पास दो दो गेम है. और फिलहाल के लिए I've got a game to kick start with you right now. So फिलहाल के लिए क्या करना है, you just have to play with MBC and Rajasthan Works Limited and win exciting prizes. जी हाँ, you can stand a chance to win 4 entry tickets. एक नहीं, दो नहीं, चार चार entry tickets

0: और आई मीन एक फूड कप जो है फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली आदि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी आज फ्रॉम द 12th of August 2026 to 16th of August 2026 और वो भी एट एसबीआई सीसीआर पर आज फ्रॉम 10 a.m. till 9 a.m. आप वहां पे जाएंगे सो यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस 5 days ऑफ शॉपिंग एंटरटेनमेंट एंड इवन फैमिली फन फीचरिंग जैसे कि इंटरनेशनल होम शॉपिंग होगा Participants from a lot of countries, entertainment shows, magic shows, a fashion show, live performance by Indian Idol singer Parinay Jain, special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh sir, and a canvas show, blood donation camp, food festival. अरे मेरी जानी इतने सारे चीजें आपको वहाँ पे मिल सकता है. आपको क्या करना है? आपको बस फिलहाल के लिए participate करना है. To give me the right answer right now and try to be my lucky winner. तो जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए पूछूंगी एक सवाल आपको देना है सही जवाब on 54991. Do participate, send me the right answer with full name and full address ke saath. Then only you'll be eligible to participate in the game. So aapko milenge aaj 4 entry tickets and 1 food coupon for the Jain's Little India Shahi Thali Adi Utsav India Mauritius Shopping Shopping Carnival jo hone wale hain bahut hi jald on 12 to 16 of August at SVICCR Pai. Sawal ye hai ki aapko bas mujhe batana hai what is the name of the daughter of Deepika Padukone. Deepika aur Ranveer ki beti ka naam kya hai? Ranveer Singh aur Deepika Padukone ki beti ka naam kya hai? 54991294. Send me the right answer, full name and full address ke saad. Aur filhal ke liye. To chaliye ji, ye leke jayenge aapko 2002 में जहां पे ये खूबसूरत सा गाना हम पेश करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो लकी अली के डाई हॉट फैंस हैं बिल्कुल जी ये खासकर हमारी तरफ से आपके लिए
1: RM2 Radio Mystique

0: to Radio Masti.
1: बिल्कुल जी, एक पल का जीना फिर तो है जाना। हां जी मेरी जान, एक पल का तो जीना ही होता है और जिंदगी को हमेशा ऐसे जीना चाहिए कि जैसे कि आज आपकी आखिरी दिन हो। हंसो मुस्कुराओ और हमेशा प्यार बांटते चलो जैसे कि हम करते हैं। ऑन आवर टू रेडियो मस्ती थ्रू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली मेसमराइजिंग गाने। सो माय डियर लवली, ये ड्राइवर्स कहां तक पहुंचे आप, प्लीज ड्राइव केयरफुली, रोड स्लिपरी है ना, धीरे धीरे गाड़ी चलाना, ठीक है। और फिलहाल के लिए जैसे कि आपको बताया, वी आर हैविंग अ लवली गेम हैपनिंग आपके और हमारे बीच में, जहां पे आज का जो हमारे विनर को है मिलने वाले हैं 4 एंट्री टिकट्स, 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल, मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC फ्रॉम 12 अगस्त टिल द 16th एट SBICC, और वो होने वाला है एट SBICC एट पाई फ्रॉम 10 AM टिल 9 PM। सवाल पूछा गया है बहुत ही आसान, जी हाँ, कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी का नाम क्या है, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग। लेकिन आज पर द गेम रूल, वी कैन हैव ओनली वन लकी विनर, और लकी ड्रॉ में आज किसका नाम निकल आया है, पहले मैं आपको सही जवाब दूं। बिल्कुल जी, उनकी बेटी का नाम है, यानी कि दीपिका एंड रणवीर सिंह की बेटी का नाम है डुआ, डुआ है उनका नाम, जी हाँ, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भेजे, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और लकी ड्रॉ में किसका नंबर निकल आया है, वो है आज का लकी विनर गिरीश गणेश लक्ष्मण, रहते हैं लक्ष्मण लेन ब्रीजे वर्दिया, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर आज का लकी विनर।

0: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा कि और हमारे बीच में ना, I know that you guys are really loving it and enjoying it, of course. हम भी तो नाच रहे हैं यहाँ पे इन द स्टूडियो, कोशिश कर रहे हैं नाचने की. तो चलिए जी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. फिलहाल के लिए लेके जाएंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: OM2
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट.
2: Sports News.
4: Radio Musti in the mix.
0: तो चलिए जी, ताज़ा खबर के साथ आ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु. गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद जी.
5: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. गरम गरम खबर सच में. अभी से कुछ घंटे पहले ज़िनेदीन ज़िदान को कंफर्म किया गया आज द हेड कोच ऑफ द फ्रांस नेशनल टीम. फॉर्मर रियल मैड्रिड मैनेजर ज़िनेदीन ज़िदान चैंपियंस लीग 3 बार जीत चुका है रियल मैड्रिड के साथ. जीजे देशां जो लॉन्गेस्ट सर्विंग मैनेजर था फ्रांस का, 14 ईयर स्टिंट इन चार्ज पूरा हुआ आफ्टर द सेमीफाइनल एग्जिट स्पेन के खिलाफ. तो ज़िदान जो वर्ल्ड कप जीत चुका है फ्रांस के साथ इन 1998, रियल मैड्रिड को जब छोड़ा दूसरी बार के लिए 2021 में, सो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वो

0: out of management था, लेकिन the 54-year-old फ्रांस का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ताकि वो 2030 के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स तक टीम को तैयार कर सके एंड व्हाई नॉट विन द वर्ल्ड कप विद फ्रांस. सो जिनेदीन जिदान जीजू इज द न्यू मैनेजर. फुटबॉल में कुछ मैच खेले जा रहे हैं, कुछ मैच समाप्त हो गए, जैसे चेल्सी की टीम की आज जीत हुई. एक मैच था सिडनी सुपर कप, ये वंडरर्स टीम के खिलाफ 6-4 से चेल्सी की जीत हुई. इसमें अंतिम 10 मिनट में आकर युआओ पेड्रो 3 गोल स्कोर करके अपनी टीम को जितवाता है और चेल्सी 6 वंडरर्स 4. ज़्यादातर इसमें सेकंड टीम के खिलाड़ियों को रखा गया था लेकिन अंत में युआओ पेड्रो को भेजना पड़ा और उसी के हैट्रिक पर उसकी टीम की जीत हुई. सो चेल्सी प्रिपेयरिंग फॉर द फ्रेंडलीज और प्रीमियर लीग. आज क्लब फ्रेंडलीज में रियल मैड्रिड वर्सेस लेगानेस और पीएसवी वर्सेस आइंडोवन. फिर कल परसों और भी मैच खेले जाएंगे और आज वैसे यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच हैं, स्टार्टिंग विद कुप्स वर्सेस सबा. फर्स्ट लेग में सबा की टीम 1-0 से जीत पाई थी. रेड इम्स जालबी टीम के खिलाफ 3-0 से रेड इम्स की हार हुई थी. फिर डिनामो ज़ाग्रेब थून के बीच मैच 1-1. सेलिए इग्नासिया 3-3 था. हार्ट्स स्टूमकाज 4-0 से हार्ट्स को हरा पाया था. और शामरॉक अरामत आर्मेनिया अभी 2-0 से अरामत आर्मेनिया आगे हैं. यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के मैच भी खेले जाएंगे और फ्रेंडलीज, बहुत फ्रेंडलीज मैच हैं. इनमें आली टीम का मुकाबला फुलहम से. फिर जस्ट काउंटिंग के जितने मैच हैं इसमें कुछ शुरू होने वाले हैं कुछ ही समय में. स्टोक का मुकाबला एवर्टन से होगा इन फ्रेंडली मैचों में. फ्रेंडली मैच जिसमें लिवरपूल का अगला मैच होगा, दैट विल बी कल. लिवरपूल खेलेगा एग्जैक्टली हाँ कल. और नए नए खिलाड़ियों को भी साइन करने की बात चल रही है. सिडनी सुपर कप में कल स्पर्स सिडनी के खिलाफ और मोस्ट प्रोबेबली स्पर्स और चेल्सी के बीच मैच होगा. सो लिवरपूल का जो मैच होगा अगेंस्ट रेक्साम, इस पर आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे. इधर वार पर बातें हो रही हैं और वीडियो असिस्टेंट रेफरी उसको केवल ब्लैटेड इनकोरेक्ट डिसीजन के लिए यूज करना चाहिए और ये यूरोपियन रेफरिंग ऑफिशियल्स ने कहा. सो चीफ रेफरिंग ऑफिसर्स 55 यूरोपियन देशों से आए हुए थे और उन्होंने ये फैसला लिया कि blatant incorrect decisions और clear missed incident को ही देखा जाएगा. छोटी मोटी बातों को लेकर बार बार की ओर नहीं जाना जाएगा. रोड्री, आप सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे, मैनचेस्टर सिटी का मिडफील्डर वर्ल्ड कप विनर रोड्री, वो कुछ पीरियड के लिए बैक सर्जरी को लेकर नहीं खेल पाएगा. मैनेजर एंजो मारिस्का ने इस बात को कंफर्म किया. ही नीड्स अ हॉलीडे, ही नीड्स टू रेस्ट एंड रिकवर एंड देन ही विल बी बैक विद अस. आएगा या नहीं ये बिग क्वेश्चन है क्योंकि रोड्री जाना चाहता है मैनचेस्टर सिटी, उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाना चाहता है और उधर रियल मैड्रिड उसको साइन करने के लिए तैयार है. लेट्स वेट एंड वॉच, कुछ कल या परसों इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे. और एज फार एज दी कॉमनवेल्थ गेम्स आर कंसर्न्ड, इसमें आज के मेडल टैली की ओर एक नजर डालते हैं तो ऑस्ट्रेलिया लीडिंग विद 26 गोल्ड मेडल्स टोटल 59, इंग्लैंड 10 गोल्ड मेडल्स टोटल 35, फिर कनाडा 7, स्कॉटलैंड 6, नाइजीरिया 6, मलेशिया 4, साउथ अफ्रीका 3, इंडिया की टीम के पास है 2 गोल्ड मेडल, 10 मेडल इन टोटल. मॉरिशस को अभी तक खाता खोलना है. आज खाता खोलते खोलते क्या कहें बंद हो गया क्योंकि वी हैड अ वेरी गुड चांस टू विन ए ब्रॉन्ज मेडल आज दिनेश पांडू के जरिए इन आल्टेरोफिली वेटलिफ्टिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको रेफरी ने इनकार कर दिया. और ये खबर विच ब्रिंग्स खुश हैं इसको लेकर क्योंकि ही हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर द वर्ल्ड कप. सर्जू गाउसांका हैज बीन नॉमिनेटेड एज द कुसाफा अंडर 20 कोच फॉर मॉरिशस. मॉरिशस फुटबॉल एसोसिएशन ने सर्जू गाउसांका को आज नॉमिनेट किया फॉर द अंडर 20 टीम. कंग्रेचुलेशन सर्जू गाउसांका को और थैंक यू. हम एमबीसी टीवी और एमबीसी रेडियो पर भी उन्होंने वर्ल्ड कप में हमारे लिए काफी काम की एंड वी आर हैप्पी फॉर हिम.
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी.
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: चार बज के 45 मिनट हो चुके हैं, सो लेट्स किक स्टार्ट द सेकंड गेम. हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले आई टोल्ड यू दैट आई हैव गॉट वन मोर वाउचर टू गिव अवे टू यू, सो माय डियर लवली लिसनर्स, जस्ट टू रिमाइंड यू कि आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इज बैक विद एक्साइटमेंट फॉर इट्स व्यूअर्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP म्योप एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 1st of August एट एस नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू में, एंड जहां पे 6 टीमें जो हैं विल बी पार्टिसिपेटिंग. कॉन्टिनेंटल चीटर्स, AMG पैंथर्स, कैंपस अब्रॉड लायंस, AAP लियोपार्ड्स एंड वन हेल्थ जगुआर्स एंड इवन थॉमस कुक टाइगर्स. सो यू कैन विजिट द ग्राउंड जस्ट टू सपोर्ट योर टीम माय डियर. सो मैचेस जो है विल बी प्लेड ऑन सैटरडे आफ्टरनून एंड इवन संडे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. और अभी के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप हमारे साथ खेलते हैं ऑन RM2 रेडियो मसी, अगर आप जीतना चाहोगे अ वाउचर, यस you can win a voucher worth 500 rupees offered to you by Ayur Yoga International. So your relaxation moment is here. Play with RM2 and MBC here. Win a gift voucher worth 500 rupees offered to you by Ayur Yoga International. So chaliye ji, filhal ke liye agar cricket ki baat ho rahi hai to ek sawal related to cricket. Ye jo movie hai MS Dhoni The Untold Story 2016 mein release hui thi, it was a biographical drama following Mahendra Singh Dhoni's journey from a ticket collector to lifting the 2011 World Cup. Is movie mein who was the main lead actor? Yes, you just have to tell me MS Dhoni ke movie ka jo hai Untold Story का मेन लीड एक्टर जिन्होंने MS धोनी का किरदार निभाया था, कौन था वो? सो यू जस्ट हैव टू गिव मी द राइट आंसर ऑन 5499-1294-599-1294. यस, फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ यू हैव टू सेंड मी द राइट आंसर, क्योंकि द वाउचर्स विल बी सेंड टू यू बाय पोस्ट. सो फुल नेम अपना लिख दीजिए एंड फुल एड्रेस के साथ विद द राइट आंसर एंड सेंड इट टू मी राइट नाउ ऑन 5499-1294 पर. यू जस्ट हैव टू टेल मी हु वॉज द मेन लीड एक्टर of the movie MS Dhoni The Untold Story jo 2016 mein release hui thi. To chaliye, your time begins now. Best of luck to you. Yeah.

0: such a beautiful track, especially for you, my dear lovely people out there. तो चलिए stay tuned and stay connected. अभी चेक करते हैं कि कौन है आज का lucky winner.
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.
0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में. आई होप दैट एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड यस यू कैन रियली फील द गुड वाइब्स जो हम आपको भेज रहे हैं थ्रू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गाने. और फिलहाल के लिए यस आई गॉट यू अ वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफ दुबई आयुर योगा इंटरनेशनल. योर रिलैक्सेशन मोमेंट इज हियर माय डियर. आपने खेला है हमारे साथ. सो अभी के लिए लकी ड्रॉ में यस लेट्स चेक इट आउट कि कौन है आज का लकी विनर. हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल कि हु इज द मेन एक्टर of the movie MS Dhoni the Untold Story jo release hui thi on actually in 2016. That's a biographical drama following Mahendra Singh Dhoni's journey from a ticket collector to lifting the 2011 World Cup. Aur sahi jawab hai Sushant Singh Rajput. Late Sushant Singh Rajput and bahut sare logon ne participate kiya hai lekin as per the rule for the game we can only have one lucky winner. Aur aaj ka lucky winner hai in our lucky draw. He is Mr. Praveen Kalichan from Grobio New Grove. So congratulations to you, Mr. Praveen Kalichan from New Grove. Yes, you are winning a voucher worth 500 rupees offered to you by Ayur Yoga International. Thank you so much for participating. Yes, my dear. Aur abhi ke liye main bas aapko itna bata sakti hu. There will be someone jo aapko phone karenge from the MBC taki wo aapko aapke vouchers jo hai post kar sake. Thank you so much.

0: आपको गिन्नी लेके जाते हैं ऑन योर फिल्मी राइट्स. सो विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम. ट्यूजडे 28th of July 2026, माय डियर लवली पीपल. वेल, जस्ट टू रिमाइंड यू कि अभी थोड़ी देर में हम आपको देंगे योर लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स, और साथ साथ में अगर आज यू नो समवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज ऑन 28th, यू जस्ट वांट टू मेक देम फील मच मोर स्पेशल, तो देरी किस बात की, जल्दी से आप अपने डेडिकेशंस हमें भेज सकते हैं ऑन 5499-1294 पर.
1: RM2 Radio Mastery.

वीडियो मस्ती स्पेशली टू ऑल ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स और जितने भी पैसेंजर्स बस में बैठे हैं. हेलो जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं. मुझे पता है इतने जोरों शोरों से इतने सारे बसेस में लगाते रहते हैं रेडियो मस्ती. एंड राइट नाउ इट्स मेगी निशांत दमा एक्टर. चलिए जी साथ में चेक करते हैं आपके प्यारे प्यारे डेडिकेशंस हैं. ऑन द नेक्स्ट वन जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू विश हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू रेशमी अंतिश बंगारी जो रहते हैं फ्लैक में. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम आंटी सटी सिचन जो रहती हैं रिविया जहां पर से. सो विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस माय डियर. एंड हियर वी गो ये अगला गाना डी आखिरी एंजॉइंग द लवली डे विद माय हस्बैंड अविश एंड अविद जो हमारे दो प्यारी बेटियां हैं मेघना एंड योशना. गाने जो हैं दे आर मेकिंग इट एक्स्ट्रा फन गिनी. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अस एंड यू आर फ्रॉम पोम ब्लॉन्स. सो बिग शाउट आउट टू एवरीवन फ्रॉम पोम ब्लॉन्स. सो वी डू हैव द नेक्स्ट वन फॉर यू माय डियर शहनाज जोगी जो है रिविया जो वहां पर से आपके हस्बैंड आपके तीन बेटों के लिए. शुक्रिया माई मीठा दिल माई स्वीट हार्ट. एंड आंटी गिनी यस मेरा बेटा कैसे हो. ये है याले शाम फ्रॉम सुरीनाम. एंड आई जस्ट वांट टू विश हैप्पी बर्थडे टू अदिशना रिकाय रहती है अमोरी में. एंड गॉड ब्लेस यू माई स्वीट हार्ट एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम आंटी सटी सिजन फ्रॉम रिविया जो वहां पर. एंड टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज आई जस्ट वांट टू विश यू लोड्स ऑफ हैप्पीनेस.

0: रेडियो मस्ती।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2

0: That was such a beautiful one in the lovely voice of Anahira. That's a remake of Babuji Dheere Chalna Pyar Mein Zara Sambhalna.
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2, Fashion Tips powered by Halkuri Fashion, House of Ready-Made Garments.
0: 5:49 हो चुके हैं और फिलहाल के लिए आई हैव गॉट यू योर लेटेस्ट फैशन टिप्स एंड यस लेडीज, अगर आप सिंपल हेयर स्टाइल को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो एक क्यूट हेयर एक्सेसरी जरूर ट्राई कीजिए, पर्ल क्लिप्स या एलिगेंट हेयर पिंस आपके लुक को इंस्टेंटली जो है क्लासी बना सकते हैं, और कैजुअल आउटिंग के लिए कलरफुल स्क्रंचीज या प्रिंटेड हेड बैंड परफेक्ट होगा, एंड ये कंफर्टेबल भी होते हैं और आपके आउटफिट में एक फन टच भी एड कर सकते हैं, और अगर पार्टी लुक के लिए कुछ चाहिए तो शाइनी हेयर क्लिप्स एंड राइनस्टोन पिंस या मेटालिक एक्सेसरीज चूज कीजिए, लेकिन याद रखिए अगर इयररिंग्स हैवी हैं तो हेयर एक्सेसरीज को सिंपल रखना पड़ता है, और ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अगर फ्लोरल गजरा कुंदन हेयर

0: या प्रिटी परांदे जो है आपके लुक को और भी ग्रेसफुल बना सकते हैं। और हेयर एक्सेसरीज चूज करते वक्त अपने हेयर कलर और हेयर स्टाइल को भी ध्यान में रखिए। और डार्क हेयर पर पर्ल और गोल्डन एक्सेसरीज बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो साइड में एक स्टाइलिश क्लिप या क्यूट बो लगा लीजिए। छोटा सा एक्सेसरी भी आपका पूरा जो लुक है फैशनेबल बना सकता है। और लेडीज एक सिंपल फैशन रूल जो है, एक टाइम पर बहुत सारे हेयर एक्सेसरीज यूज नहीं करें, एक स्टेटमेंट पीस ही आपको एलिगेंट और स्टाइलिश बना सकते हैं और आपके लुक को भी एनहेंस करेंगे।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकर फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: आरएम2।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ ना कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: शन के नियमों में होगा बदलाव अगले वर्ष 2 जनवरी से नई शर्तें लागू। राष्ट्रसभा में पीएनक्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने हथियारों के लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का ऐलान किया। साथ ही हथियारों और कारतूस की बिक्री पर निगरानी और कड़ी किए जाने का ऐलान। एबोला वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एबोला वैक्सीन के पहले वैश्विक क्लिनिकल टेस्ट के सफल होने की घोषणा। भारत में भक्ति और आस्था का उत्साह चरम पर। एक और अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं बाबा बर्फानी के दर्शन किए, तो दूसरी ओर नीलाद्री विजय के साथ भगवान जगन्नाथ की विश्व विख्यात रथ यात्रा का पारंपरिक समापन। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश हैं समाचार विस्तार से। बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने की दिशा में आज राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को दूसरी पढ़त के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा बजट में घोषित वित्तीय आर्थिक और सार्वजनिक वित्त से जुड़े कदमों को लागू करना है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: These bills give legislative effect to the reforms that are guided by the four principles that define our approach to nation building. That is responsibility, solidarity, efficacité économique et justice sociale. They are more than a collection of legislative amendments. Together, they provide the legal framework to restore fiscal sustainability, strengthen our institutions, modernize our economy, reinforce our social contract, and prepare Mauritius for the challenges of an increasingly uncertain world. The future, Madam Speaker, cannot be secured by postponing difficult decisions. It is built by having the courage to act today. Fiscal consolidation is not an end in itself. It is the means by which we restore the strength of the state, preserve confidence in our public finances, and ensure that future generations inherit a country that is resilient, competitive, and able to protect the most vulnerable. As I said in the budget speech, the future depends on what we do in the present. These bills translate that conviction into action. They lay the foundation of a future-ready Mauritius. That is one that is fiscally responsible, economically stronger, socially fairer, and better equipped to see the opportunities of tomorrow. The reforms, Madam Speaker, which are before this House, demand courage and perseverance. But they are reforms that are taken not for the next election, but for the next generations. With the confidence in our people and faith in our country's future, this government will continue to take the decisions that are necessary to secure lasting prosperity for all Mauritians. Madam Speaker, with these words, I now commend the bill to the House.
2: Thank you.
0: राष्ट्रसभा में आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान विदेश में रह चुके मॉरिशस के नागरिकों को मिलने वाली पेंशन का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले वर्ष जनवरी महीने से अन्य शर्तों के साथ पेंशन पाने के लिए व्यक्ति को 40 वर्ष की आयु के बाद मॉरिशस में कम से कम 15 वर्ष की कुल अवधि तक रहना होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये नया नियम उन लोगों पर लागू नहीं जो वर्तमान प्रणाली के तहत पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि सरकार निलंबित सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिए जाने की मौजूदा नीति पर फिर से गौर किया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह पर स्टेट एज पेंशन लागू होने के साथ ही इसके लिए जरूरी निवास शर्तों में भी बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सांसद चेतन बाबूलाल के सवाल के जवाब में ये बात कही। अभी विदेश में रहने या काम करने वाला 70 साल से कम उम्र का मॉरिशन नागरिक पेंशन का दावा कर सकता है अगर वह 18 साल की उम्र के बाद कुल मिलाकर कम से कम 12 साल तक मॉरिशस में रहा हो।
1: A person will now become eligible to the

अब कोई व्यक्ति बुढ़ापे का पेंशन पाने का हकदार तभी होगा जब वो 40 साल की उम्र के बाद मॉरिशस में कुल मिलाकर कम से कम 15 साल रहा हो और पेंशन के लिए आवेदन करने से ठीक पहले के 3 सालों में कुल मिलाकर 12 महीने मॉरिशस में रहा हो। इस बदलाव से ये पक्का होगा कि पेंशन उन लोगों को मिले जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान हमारे देश, हमारे समाज और हमारे टैक्स सिस्टम के विकास में योगदान दिया है, न कि उन लोगों को जिन्होंने अपना पूरा करियर विदेश में काम करते हुए बिताया और अब रिटायरमेंट के लिए मॉरिशस लौटने का फैसला किया है। मैं उन रिटायर्ड हो चुके लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं जो अभी मौजूदा रेजिडेंस नियमों के तहत पेंशन पा रहे हैं। ये बदलाव उन पर लागू नहीं होगा। रेजिडेंस से जुड़ी नई शर्त सिर्फ उन लोगों पर लागू होगी जो 1 जनवरी 2027 या उसके बाद सरकारी वृद्ध पेंशन के लिए आवेदन करेंगे। सांसद बाबूलाल के एक और सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सामना नहीं कर रहा, जिसे रुकी हुई या घटती आर्थिक वृद्धि, ज्यादा और लगातार बनी रहने वाली महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के तौर पर परिभाषित किया जाता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ऐसे आंकड़े पेश किए जिनसे पता चलता है कि महंगाई उम्मीद से कम रही है, विकास दर 3% है और बेरोजगारी दर 2020 के 9.2% से घटकर 2025 में 5.7% हो गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टकरावों के कारण आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और नौकरियों के सृजन पर नकारात्मक असर पड़ने का वास्तविक जोखिम है। फिर भी पर्यटन और निर्माण क्षेत्रों से सकारात्मक योगदान की उम्मीद है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की चुनौतियों के बावजूद इस साल रेस्टोरेशन सेक्टर में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है और पर्यटकों की संख्या लगभग 1.47 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार हवाई संपर्क बढ़ाने और सीटों की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है। खासकर टर्किश एयरलाइंस की 3 अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ानों और इथियोपियन एयरलाइंस की 3 साप्ताहिक उड़ानों के जरिए जो एमिरेट्स की पहले से चल रही 2 रोजाना उड़ानों के साथ जुड़ेंगी। मैं सभा को ये भी बताना चाहता हूं कि मैं खुद उस कमेटी की अध्यक्षता करूंगा जिसे हमारी हवाई पहुंच नीति की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। जहां तक निर्माण सेक्टर की बात है, इसमें धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। ये सुधार कई बड़ी मूल ढांचा परियोजनाओं जैसे M4 मोटरवे, रिंग रोड प्रोजेक्ट का 2रा चरण, आईलैंड कनेक्टर टर्मिनल को 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रिविया दिजोंगी डैम के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे उभरते क्षेत्रों में निजी सेक्टर के बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण होगा। व्यवसाय को आसान बनाने और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय सभा में एक नया बिल पेश किया जाएगा। इसे स्थानीय और विदेशी ठेकेदारों के लिए प्रोडक्टिव निवेश के और मौके बनेंगे, खासकर रिन्यूएबल ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले बजट में मूलभूत उत्पादों पर सब्सिडी देने के लिए प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए लगाए गए थे और ये सब्सिडी अन्य उत्पादों तक भी बढ़ाई गई थी। सांसद जमन के सवाल के जवाब में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि 1 जनवरी 2014 से 27 जुलाई 2026 के बीच ड्रग तस्करी के 18 मामलों में 23 पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। कुछ अफसर 15 साल तक कैद की सजा काट रहे हैं, जबकि अन्य मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं। सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने की नीति की समीक्षा करने जा रही है जिन्हें नौकरी से सस्पेंड किया गया है। सोशल मीडिया पर बोबासा कैदखाने के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर वायरल हुई एक वीडियो और कुछ तस्वीरों को लेकर सांसद रामदास के सवाल रहे। ये तस्वीरें जेल में जब्त किए गए एक मोबाइल फोन से मिली थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और 3 कैदियों को अन्य कैदखानों में ट्रांसफर किया गया है। वीडियो और तस्वीरों में दिख रहे 10 लोगों की पहचान बोबासा कैदखाने के कैदियों के तौर पर की गई है। 20 जुलाई 2026 को पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई और सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जांच शुरू की गई। मॉरिशस प्रिजन सर्विस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन को पुलिस ने जांच के मकसद से अपने कब्जे में रखा है। पुलिस की IT यूनिट अभी इस डिवाइस की फोरेंसिक जांच कर रही है।
रोड्रिग्स में तैनात पुलिस अफसरों को इंटरपोल की तरफ से प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री सांसद फ्रांसवा के सवाल का जवाब दे रहे थे। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अब तक रोड्रिग्स इंटरपोल के ग्लोबल सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा नहीं था और उसे पोर्ट लुइस में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के जरिए बातचीत

0: पूरी जानकारी तेजी से शेयर कर सकता है। सांसद एटवारिया की सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि मॉरिशस ने मित्र देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ समुद्री सुरक्षा और डिफेंस से जुड़े 12 समझौते तय किए हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा तथा देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा शामिल है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इनमें से कोई भी समझौता उस जोन में तेल, गैस या किसी अन्य प्राकृतिक संसाधन की खोज से संबंधित नहीं है।
1: राष्ट्रसभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान हथियारों के लाइसेंस जारी करने के नियमों और हथियारों तथा कारतूस की बिक्री पर नियंत्रण का मुद्दा चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि हथियारों का लाइसेंस देने के नियमों में बदलाव लाया जाएगा, साथ ही हथियारों और कारतूस की बिक्री पर निगरानी भी और कड़ी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पिछले जून महीने में मिडलैंड्स में गोली मारकर की गई जोनाथन कुयाना टू की हत्या के मामले की जांच की मौजूदा स्थिति का भी जानकारी दी। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में सुनिए।
0: विपक्ष नेता ने प्रधानमंत्री से जोनाथन कुयान टू की हत्या की जांच की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारियां मांगी। ये हत्या पिछले जून महीने में मिडलैंड्स के एक हंटिंग एस्टेट में हुई थी। प्रधानमंत्री के अनुसार 12 जून को हुए पोस्टमार्टम से पता चला कि पीड़ित की मौत सीने में गोली लगने से हुई थी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी बताया कि जांच क्यूपिप सीआईडी, ईस्टर्न डिवीजन सीआईडी और एमसीआईटी द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 21 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने जांच को आगे बढ़ाने में मदद के लिए पुलिस द्वारा इनाम की घोषणा का भी जिक्र किया।
2: A reward of 500,000 rupees has been proposed to any reliable informer. Subsequently, 4 persons have approached the police and statements have been recorded from 3 of them. The inquiry is ongoing. I wish to inform the House that a team of foreign investigators is also assisting the police in this inquiry.
0: PNQ के जरिए प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि जनवरी 2025 से जुलाई 2026 के बीच अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी 4 घटनाएं पेश आईं। ये भी पता चला कि 27 जुलाई 2026 तक कुल 4,287 फायरआर्म लाइसेंस जारी किए गए थे और 3 हथियार डीलर अमिनेशंस आयात करने के लिए अधिकृत हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई अर्जियों पर भी चर्चा की।
2: For monitoring the sale of arms and ammunition and ensure a more stringent control. I've also requested the Commissioner of Police to review the criteria for granting of firearm licenses. At the same time, the Commissioner of Police will review the list of firearm licenses and revoke licenses whenever the reasons for such licenses were delivered and which are no longer valid. Madam Speaker, in assuming office in November 2024, we inherited a law and order situation that threatened not only the reputation of the police, an institution officially recognized as a disciplined force, guided by the values of integrity, accountability, and public service, but also the very foundation of public trust in our institutions. The forthcoming setting up of the National Crime Agency represents an important institutional reform. The reform represents a pivotal step towards building an integrated, intelligence-led and multi-agency response to serious unorganized crime.
0: विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से पुलिस बल में सुधार के जरिए सरकार का लक्ष्य इस सेवा को अधिक गतिशील और आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुरूप बनाना है।
1: पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से हुई 11 घंटों से अधिक समय तक चली पूछताछ पर एक बार फिर नज़र। लगभग 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम सामानों की आपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट को मर्केंट आइलैंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए जाने के मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत उन्हें अंडर वार्निंग पूछताछ के लिए बुलाया गया। अपने वकील के साथ पहुंचे प्रवीण जगनाथ ने जांच अधिकारियों के 90 से अधिक सवालों के जवाब दिए। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: रात के 2 बजे हैं जब प्रवीण जगन्नाथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC के दफ्तर से बाहर निकले। पूर्व प्रधानमंत्री ने यहां 11 घंटे से ज्यादा समय बिताया। इस दौरान जांचकर्ताओं ने उनसे लगभग 30 बिलियन रुपए के एक ठेके को मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप यानी MMG को दिए जाने में उनकी कथित भूमिका को लेकर पूछताछ की, जबकि ये कंपनी शुरुआती बोली लगाने वालों में शामिल नहीं।

0: ही थी। जाने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वह पूरी तरह शांत हैं और जांच पूरी होने तक हर तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। प्रवीण कुमार जगनाथ ने कहा कि पूछताछ अभी बाकी है और एक अन्य दिन पर इसे जारी रखी जाएगी जो FCC के साथ मिलकर तय की जाएगी। फिलहाल वे ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ किए जाने पर तथा प्रवीण कुमार जगनाथ पर कौन सा आरोप लगाया गया है प्रेस के सवाल पर प्रवीण कुमार जगनाथ ने कहा, जब वे सभी तहकीकात के दौरान सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे तभी वे अपना बयान देंगे। अभी के लिए तिथि तय नहीं हुई है। FCC के दफ्तर के बाहर प्रवीण जगनाथ के समर्थन में जुटे समर्थकों ने अपना विरोध जताया। हालात उस वक्त और तनावपूर्ण हो गए जब तीखी नोकझोंक के बीच भीड़ के कुछ लोगों ने एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया। पिछले साल शुरू हुई इस जांच में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की स्थानीय प्रतिनिधि करीना नेजिस और पूर्व मंत्री रंगनाथन पदयाची और सुदेश कालीचरण शामिल हैं। दोनों पूर्व मंत्रियों पर फिलहाल पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन यानी पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ पहुंचाने का अस्थायी आरोप लगाया गया है।
1: इसी मामले में पूर्व अटर्नी जनरल मनीष गोविंद से भी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर केवल कानूनी राय दी थी और इस संबंध में उन्होंने किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। विदेश की खबरों में जो आज सुर्खियों में है, इबोला वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक अहम सफलता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इबोला वायरस के खिलाफ विकसित किए गए एक वैक्सीन के पहले विश्व क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने की घोषणा की। ये परीक्षण एक स्वयंसेवक पर किया गया। इसे उस वायरस के खिलाफ बड़ी प्रगति माना जा रहा है जिसने कोंगो गणराज्य में अब तक लगभग 1,500 लोगों की जान ली है। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान जारी। इस भूकंप में कई लोग घायल हुए हैं जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। कई सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। और भारत में हिमालय से लेकर पूरी धाम तक देश इन दिनों भक्ति और आस्था के रंग में रंगा है। श्री अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वही नीलाद्री विजय के साथ भगवान जगन्नाथ की विश्वविख्यात रथ यात्रा अपने पारंपरिक समापन तक पहुंची है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: हर हर महादेव के पावन जय घोष से हिमालय की वादियां भक्ति रस में सराबोर हैं। श्री अमरनाथ महायात्रा ने इस वर्ष आस्था का एक नया इतिहास रच दिया। केवल 18 दिनों में ही 4 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पावन हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं। अब तक 4,14,000 से अधिक भक्त इस दिव्य यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। कठिन पर्वतीय मार्ग, प्रतिकूल मौसम और ऊंची हिम श्रृंखला भी श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और शिव भक्ति के आगे फीकी पड़ गई। अमरनाथ की ये पावन यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, तप, समर्पण और ईश्वर से साक्षात्कार का आध्यात्मिक पथ मानी जाती है। इस वर्ष यात्रा के पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस महायात्रा का समापन होगा। शंखनाद के बीच पूरी की गई विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज आध्यात्मिक उल्लास के साथ समापन हो गया। नीलाद्री बीजे की पवित्र परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा पुनः श्री मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए। 9 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद प्रभु के अपने धाम लौटने का ये दिव्य क्षण श्रद्धा, भक्ति और सनातन परम्परा का अनुपम प्रतीक माना जाता है। इससे पहले बहुधा यात्रा और सुना बेशा जैसे भव्य अनुष्ठानों में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रभु के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
1: अब चलिए जानते हैं कि आने वाले 24 घंटों के दौरान देश

में मौसम कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। इसके अलावा पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज रात और कल सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिर रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद भी पश्चिमी इलाकों में बादल छा जाएंगे और सेंट्रल प्लेटू पर भी बादलों के घिर आने का अनुमान लगाया गया है और साथ में बारिश का भी अनुमान है। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा खासकर आज रात और कल सुबह दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:41 पर, शाम को सूर्यास्त 5:51 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर फैजन का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। अनफील्ड रोड श्वाजी में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री आत्माराम लक्ष्मण जो रोहिणी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे श्री राम लक्ष्मण के मकान अनफील्ड रोड श्वाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें बैलोंभा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। कालीमाई रोड लालमाटी में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी रेहाना जमन पैदाशी नाम इमाम जी और जो रेहाना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज रात 7:45 बजे उनके शौहर हसीन जुमन के मकान कालीमाई रोड लालमाटी से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बेलवेडिया की अहलेबेट मस्जिद और दफनाने के लिए बोबुआ का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7:15 PM। कालीचरण लेन काहुलालियान वाक्वामी 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चिंतामणि ओबिलक की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी बेटी शारदा शिवनाथ के मकान कालीचरण लेन काहुलालियान वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेहिनो वाक्वा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। एस एस आर रोड सैन फ्रांसवा कप मालेहोय में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री रणधीर मगर जो दिवंगत नारायण दत्त मगर के सुपुत्र थे और जो रणधीर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ मंजू मगर के मकान SSR रोड सैन फ्रांसवा कप मालोगे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रुजिकल मोसलमान बाटिस्टो कुलेमे 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आमोदों काहुपुनन पैदाशी नाम सुकुरमनी और जो मीना के नाम

0: नाम से ज्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान हुयुशी कैल मोसिल मोबाची स्टोकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमत हैं कि शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। फॉरेस्ट पार्क हेनोल्ट रोड इंग्लैंड में 63 साल की 63 years old की श्रीमती रूपा मंगरू जो गोबिन मंगरू की बेटी थी और जो पहले बालों सूरी नाम रहा करती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार पहली अगस्त को मॉरिशन समय अनुसार शाम 3:30 बजे इंग्लैंड में उठाई जाएगी। क्रिमेशन इन इंग्लैंड ऑन सैटरडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Pour le LE, ce 17e anniversaire, du lait liquide, Formalat, Eve Fresh 1 litre à 57,75 €. Rosanna, Greenpeace 400 grammes, de l'Italie à 19,60 €. Elseve, shampoing et après-shampoing, Zis 189,50 €.

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: आर एम टू

तो चलिए जी, ऐसे खूबसूरत गानों का सिलसिला आप सुन पाएंगे आपके इवनिंग लाउंज में विद दिव्या जो ऑलरेडी आ गई है इन द स्टूडियो। आप हमें इजाजत दीजिए। जी हाँ, हम कल फिर मिलेंगे 4 से 7 ऑन आवर रेडियो मस्ती। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग लव।

0: भाई देखिए, हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार में अगर आप कस्में वादे करते हैं तो इन कस्में वादों को निभाना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है. इफ यू वांट टू रेस्टोर फेथ इन लव सो यू हैव टू बी द फर्स्ट वन. आप आगे आए और जो जो वादे आप करते हैं उनको निभाते जाए. वेल, 7:06 हो चुके हैं. वादे के हिसाब से हम भी यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात करने आ चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर हमारा और आपका साथ रहेगा टिल 9 PM. जी हाँ, कहने को तो 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन पलक झपकते ही ये वक्त कैसे निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा. चाहे आप किचन में खाना बना रही हैं, या फिर डिनर ले लेने के बाद आप डिशेज करने वाले हैं, या फिर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट मी, आप लोग इतने हर एक गीत को एंजॉय करने वाले हैं कि देखते ही देखते ये टाइम भी निकल जाएगा. सो चलिए, जितने भी बच्चे कुछ टाइम है हमारे और आपके दरमियान, इनको हम मेमोरेबल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. और साथ में वेलकमिंग योर मैसेजेस, आपके मैसेजेस के बिना तो हमारा शो, हमेशा हम कहते हैं ना, इनकम्प्लीट है. सो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी वन जो उस पार से हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे आप अब रोड में हैं या फिर मॉरिशस में हैं, डू लेट अस नो कि आप किस तरीके से अपने इस ट्यूज़डे इवनिंग को बस स्पेंड कर रहे हैं. और कल तो वेंसडे है और इस हफ्ते का जो मिड वीक मस्ती होता है वो मिलकर हम ज़रूर धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं. फिलहाल के लिए इस ट्यूसडे इवनिंग को भी हम बाहें खोलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ कूल रोमांटिक सूदिंग म्यूजिक के साथ.
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: चलिए ट्यूसडे इवनिंग 28 जुलाई 2026 शायद आपको याद होगा लास्ट वीक या फिर दो हफ्ते हो चुके हैं जब से मैंने आपको ये बताया था कि ये महीना भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और देखिए वी रीच द एंड ऑफ दिस मंथ एंड आई जस्ट होप कि ये अगस्त महीना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही स्पेशल हो एंड जितने भी सारे आपके प्लान्स हैं प्रोजेक्ट्स हैं एंडीवर्स हैं उसमें आप हमेशा सक्सेड होते रहें एंड कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है सो कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड हम तो यही चाहते हैं कि जब भी आपके मैसेजेस आए उसमें आपका प्यार झलके और प्यार के साथ साथ आप हमेशा जब हमें याद करें तो आप यही कहें कि यू हैव सक्सीडेड और वैसे कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होने से ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ जाती हैं और इसके साथ साथ अगर आप खुद में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप लविंग योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमेशा हम कहते हैं ना कि दूसरों के साथ हम वेट करते रहते हैं कि कब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिले लेकिन अगर आप खुद से थोड़ी सी आपस में मुलाकात करें तो बेहतर रहेगा वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हम बहुत लोगों को जानने पहचानने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं बट लिटिल डू वी रियलाइज़ कि बस सबसे टफ काम यही है खुद को जानने में खुद को पहचानने में तो अगर आपको टाइम मिले ना तो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं तो हम भी बदलते हैं इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं और जिंदगी से क्या चाहते हैं वेल डोंट फॉरगेट इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM और बस हमें याद करते रहिएगा ऑन 5499-1294 पे आपका हम इंतजार कर रहे हैं
1: इवनिंग लाउंज RM2 रेडियो मस्ती

बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि जितना हो सके आप यादें क्रिएट कीजिए, क्योंकि एक दिन हम नहीं रहेंगे तो हमारे अपने पलट कर बस इन्हीं यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज एंड टू नो कि यादें हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं. हेलो दिव्या, प्लीज़ डेडिकेट अ स्वीट गाना फॉर पापा संगीत, मामा मीला, बहने हैं रीमा, उर्वशी, जीजू अजय, युधीश, टू आवर लिटिल एंजल्स दिवांश, दिया एंड उर्वी, नाउ हेडिंग टू वेडिंग and you on your way and listening to the lovely song selections. Thank you so much Deepika, hamara saath dene ke liye, all the way from Manish Goodlands. And Manish ke liye bhi agla gana hum dedicate karenge. So Deepika and Manish, aap log Goodlands se is waqt connected hain hamare saath. Namaste Divya ji, please agla gana Sangeeta ke liye, unke parivar ke liye, aapko bhi dhanyawad itne pyar se hamara saath dene ke liye. And yahan par aap kehti hain, hello everyone, I'm Hansini, please play the next song for my best friend Reena Pulwan. I want to thank her for her generosity and kindness from besties. I guess आपका नाम रितिशा है क्योंकि यहाँ पर बस आपका आधा नाम ही आया है. So please अगर possible हुआ do send your message once again on 54991294 WhatsApp के जरिए. Hello, namaste, good evening, प्यारी दिव्या. Hello, प्यारी टीना जी, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. And you having dinner with your family as usual, एक plate.

0: गिफ्ट आपने हमारे लिए सेट करके रखा है और एज यूजुअल हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीज मेरी तरफ से आप जरूर खा ही लेना. नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली टू योर फैमिली, योर डियर एंड नियर वंस. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

मना भी मन आपको बहुत ही प्यार से पुकार रहा है और दिल से दिल तक की बातें जब पहुंचती हैं तो इससे ही प्यार और भी बढ़ने लग जाता है। आई जस्ट होप कि जिससे आप प्यार करते हैं उन तक आपकी दिल की आवाज़ पहुंच पा रही है, और अगर आपको लगता है कि नहीं पहुंच रही है तो अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट आपको तो करना है ही, ताकि दिल की आवाज़ उन तक पहुँचे और उनको भी पता चले कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं।

अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार हो रहा है तो शायद आपका दिल सही कह रहा है। देखिए जब दिल कुछ कहता है तो आपको दिमाग से इतना भी नहीं पूछना होता है, क्योंकि प्यार सोच समझ कर नहीं होता है, प्यार हो जाता है और जिसके साथ होना होता है वो दिल को पता होता है। हाँ ये अलग बात है कि थोड़ा सा आपको मेक श्योर करना है कि आप सही इंसान से प्यार करते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत दिमाग का भी खेल होता है। एंड चलिए जहाँ पर कहते हैं ना कि लॉजिक होता है वहाँ पर मैजिक नहीं होता है, इसलिए यू हैव टू बिलीव इन द मैजिक ऑफ लव। एंड आई जस्ट होप कि हमेशा ज़िंदगी में आपको सच्चा प्यार मिले और एक अच्छा इंसान मिले ज़िंदगी में। कहते हैं ना आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर अच्छा होता है तो ये कभी फेड नहीं होता है। वक्त के साथ साथ आपकी ब्यूटी, जो जितनी भी आप सुंदर क्यों ना हो, ये वक्त के साथ ढल ही जाता है, फेड हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं उनकी अच्छी फितरत की वजह से, तो ये अच्छी फितरत ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने वाला है। और हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छी फितरत वाला इंसान हमेशा ज़िंदगी में आपको खुश ही रखता है और खुद भी खुश ही रहता है। सो चलिए, आई होप कि यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू इवनिंग लाउंज, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ डू सेंड योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस ऑन 54991294। हम जानना चाहते हैं कि आप अभी इस वक्त क्या कर रही हैं। कुछ लोग लेट डिनर लेते हैं, ये अलग बात है कि अगर आप काम पर हैं, आपको

0: वो कभी मौका नहीं मिलता है, अपना टिफिन आपको कंप्लीट करना है, सो प्लीज आप टाइम पे जरूर अपना डिनर ले लीजिएगा. टू ऑल दोस वर्किंग नाइट शिफ्ट, अभी के लिए आपको हम विश करेंगे बॉन वॉयेज. बस गुड म्यूजिक के साथ जुड़ जाइए और आपका मूड ऐसा ही हो जाएगा.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

बिल्कुल किसी को आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके मैसेजेस का हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं ऑन 5499-1294। चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है न्यू इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। आई जस्ट होप दैट यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम। वैसे चिल करना काम करने के बाद इसका मजा ही कुछ और होता है, स्पेशली नोइंग कि आपको बस घर पे ही रहना है। एंड चिल करने का मतलब बस यही नहीं है कि आप बस गाने सुने और अपनों को थोड़ा सा इग्नोर करें, लेकिन अगर आप गाने सुनेंगे एंड एट द सेम टाइम अपनों से थोड़ी बात ही करेंगे, एक कम्युनिकेशन सेट करेंगे अपनों से, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि दिन भर की थकान से आप इतने थक जाते हैं कि आप जब घर वापस आते हैं तो इस थकान को दूर करने के लिए बस एक ही इलाज होता है, एक ही सोल्यूशन होता है, वो ये है कि आप बस अपनों से थोड़ी बातें कीजिए। इट्स लाइक अ थेरापी। अगर गुड म्यूज़िक थेरापी है तो अपनों से बात करना भी, इससे आपका मन हल्का होता है। और साथ में कहते हैं ना कि बॉन्ड को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है सो कम्युनिकेशन इज़ द की। जब आप रोज़ रोज़ एक दूसरे के दिन आपका दिन

0: कैसा गया, हाउ डिड यू फील टुडे, आपने क्या किया, आपने क्या खाया, या फिर अगर आपकी मम्मी ने आपका टिफ़िन तैयार किया था या फिर आपकी बीवी ने आपका टिफ़िन तैयार किया था, उनको बताइए कि खाना आपको कैसा लगा, थोड़ी सी तारीफ़ करिए। जब डिनर खाते हैं तो चाहे आपकी मम्मी बनाती हैं या फिर आपकी वाइफ बनाती हैं, आप यकीन मानिए बस 2 सेकंड लगता है खाने की तारीफ़ करने के लिए। इट विल मेक देयर इवनिंग, या फिर सुबह सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करें तो उनके साथ थोड़ी बातें कीजिए। इट रियली मीन्स अ लॉट। ये छोटे छोटे पल ही है जो उनको दिन भर याद वो करने वाले हैं। सो इसीलिए आप कभी अपने गम को या फिर अपने वर्क प्रेशर को भुलाकर उनके बारे में 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी सोचिए और आप देखिए कि किस तरीके से वो आपको खुश करने में लग जाती हैं। और बस सिंपल सॉल्यूशन है, जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट, एंड प्यार की बुनियाद ही ये कम्युनिकेशन होता है, प्यार की बुनियाद ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट होता है।
1: Evening Lounge,
2: RM2
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: भाई देखिए, जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक छोटा सा घर, प्यार करने वाला परिवार और एक प्यार करने वाला इंसान। कहते हैं ना कि होम इज नॉट अ प्लेस, होम इज समवन जिसमें आप खुद को देखते हैं। और हमेशा आप उस शख्स से प्यार करिएगा जिससे आप अपने फीलिंग को मिरर कर पाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आपको किसी से प्यार है, लेकिन जब भी आप किसी पॉइंट को रेज करते हैं, उनके पास आपको सुनने के लिए टाइम नहीं है या फिर वो बात नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि बस घूम फिर के यू आर इन द रॉन्ग सर्कल, क्योंकि आप प्यार में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट, एनी टाइम जब भी आपको महसूस होना कि आपको फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, तो आपको किसी से इजाज़त पूछने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योर लव।

0: RM2 Radio Musti.
1: वेल इट्स 8:54 ऑलरेडी एंड थैंक यू सो मच आपने इतने प्यार से दिव्या का साथ दिया टिल 7 PM. अभी तो 9 बजने को है थोड़ी देर में. हमारे जाने का वक्त आ चुका है. कल मिलेंगे सेम टाइम 7 to 9 बजे के बीच. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग. दिव्या को दीजिए इजाज़त. और फिलहाल के लिए एक और मैसेज यहाँ पर जाते जाते हमेशा लास्ट में एंड में सुनील जी का मैसेज आ ही जाता है. एंड चलिए आप कहते हैं कि आज आप काफ़ी थके हारे हैं एंड आई जस्ट होप कि आप एक स्वीट सा हक ज़रूर अपनी पत्नी शालिनी को देंगे और आपकी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी, है ना. क्योंकि कहते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा एक ही इंसान से प्यार करते रहना चाहिए. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत ही सिंसियर हैं और ये सिंसियरिटी, ये ऑनेस्टी आपको हमेशा अपनी पत्नी को दिखाना है. तो चलिए आप एक ही इंसान से प्यार करें, बस यही काफ़ी है. तो चलिए द नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू सुनील जी, सुनील रघुबीर जी फ्रॉम थ्रियोले, एंड गुज आउट फॉर योर वाइफ एंड आपकी दो बेटियों के नाम भी.

0: Bollywood.
1: Radio Musti.
2: Late Night Grooves.
3: RM2. Radio Musti.
4: A very good evening, ladies and gentlemen. Welcome इस brand new musical journey में जहाँ पर टेंशन को हम बिल्कुल साइड में रखने वाले हैं। तो आज रात के 3 घंटे सिर्फ आपके नाम, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बातें और बहुत सारा बॉलीवुड। अरे साहब, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, लेकिन म्यूजिक वो तो दिल का परमानेंट रूममेट है। तो स्माइल कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और मूड को बोल दीजिए कि आज रात नो नेगेटिविटी। तैयार हो जाए 3 घंटे का ये सफर। लेट नाइट ग्रूव्स आरएम2 पर।

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: भाई, जिंदगी में अगर स्ट्रगल है तो समझ लीजिए आप स्टोरी के इंटरेस्टिंग पार्ट में हैं। हर फाइट आपको थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाती है और हर सेटबैक आपको कमबैक के लिए रेडी भी तो करता है। कभी कभी लगता है कि बस और नहीं, लेकिन वही मोमेंट होता है जब कहना चाहिए कि एक बारी और ट्राई करते हैं।

0: अच्छा एक छोटी सी रिक्वेस्ट।
1: हाँ, अभी से कह रहा हूँ, प्लीज एक स्माइल तो बनती है, फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं, ये तो फ्री की चीज है जो चेहरे पर सजाना। हाँ कभी कभी मुश्किल जरूर होता है, लेकिन ये भी सच है कि स्माइल करने से प्रॉब्लम्स डिसअपीयर तो नहीं होती, लेकिन उनसे डील करने की जो एनर्जी होती है ना वो जरूर मिल जाती है। और वैसे भी आपकी स्माइल किसी और के बोरिंग दिन का हाईलाइट बन सकती है, तो एक स्माइली चेहरा, उसको कैप्चर कीजिए और कैप्चर कीजिए ये मोमेंट।

पूरे दिन की भागा दौड़ी। नहीं, काम जरूरी है, करियर भी जरूरी है और डेडलाइंस भी, लेकिन कभी कभी लैपटॉप को, अपने फोन को गुड नाइट बोलना काफी जरूरी है। देखिए साहब, लाइफ सिर्फ टारगेट्स और मीटिंग का नाम नहीं है, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी फैमिली और थोड़ा मी टाइम, ये काफी जरूरी है। आज जो काम नहीं हुआ वो हो जाएगा ना, क्योंकि आप करना चाहते हैं। अरे साहब, कल का नया दिन जो आएगा वो कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर, वक्त लेकर जरूर आएगा, 24 आवर्स आपकी तिजोरी में। तो ब्रीद इन एंड रिलैक्स।

इश्क के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा एहसास ही इश्क है।

कभी कभी मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलती, वो अंदर से निकालनी पड़ती है। कोई आपको पुश करे या ना करे, खुद से कहना चल यार एक स्टेप और। ये जो आपका दिमाग होता है ना, ये बहुत कुछ कर सकता है। वो इसलिए कहते हैं कि मेंटल स्टैमिना और फिजिकल स्टैमिना, आपको अपनी स्पीड से चलने का पूरा हक है, बस रुकना मत। किसी की जर्नी फास्ट है, किसी की स्लो है, बस कंपैरिजन का कोई प्राइस नहीं मिलता।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत लेट नाइट क्रूज आरएम 2 पर। और भाई हमारी अचीवमेंट तो एक ही, रेडियो के जरिए, म्यूजिक के जरिए आप सबको हम साथ में ले आते हैं। वैसे कहते हैं छोटी सी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करना जरूरी है, उसको इग्नोर मत कीजिए। आज जो आपने एक छोटा स्टेप लिया है वही आपको कल अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। एक फोन कॉल, एक डिसीजन, एक ब्रेव अटेम्प्ट, कभी कभी लाइफ बदलने के लिए इतना ही काफी होता है। इसलिए अपने ड्रीम्स को समडे की पार्किंग में मत रखिए, कुछ तो कीजिए, छोटा ही सही, लेकिन आज से शुरू कीजिए।

आज रात का एक मिनट ऐसा करिए कि अपनी जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको साइड में रखिए और सोचिए आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं। एक लविंग फैमिली, एक सच्चा दोस्त, एक सेफ होम या फिर एक नया सनराइज देखने का चांस। हाँ, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, नेगेटिव पर ध्यान देंगे तो वही दिखती जाएंगी। इसलिए कभी कभी हैप्पीनेस किसी नई चीज़ में नहीं, एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स को नोटिस करने में होती है। तो दिल से कहिए थैंक यू जिंदगी।

अगर आपका ड्रीम इम्पोर्टेंट है तो एक बैड डे को उसका फुल स्टॉप मत बनने दीजिए। कभी प्लान फेल होगा, कभी लोग डिसअपॉइंट करेंगे, कभी खुद पर डाउट भी होगा, लेकिन रिमेंबर, फेलियर एक चैप्टर है, पूरी स्टोरी नहीं। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुकना नहीं।

भाई जिंदगी में दोस्त बहुत जरूरी होते हैं, जैसे म्यूजिक आपका दोस्त बनकर आपके साथ चलता हुआ 24/7। हाँ, वैसे ये जरूरी नहीं कि दोस्त वही है जो सिर्फ पार्टी में साथ हो। दोस्त वो है जो आपके साइलेंस को भी समझ ले और बिना पूछे पूछ ले, क्या हुआ बताना। लाइफ में एक जेन्युइन फ्रेंड का होना बहुत जरूरी है, एक जैकपॉट से कम नहीं। ऐसा फ्रेंड जो आपकी सक्सेस से जेलस नहीं, जेन्युइनली हैप्पी हो। आज रात अपने किसी स्पेशल दोस्त को एक मैसेज भेजिए, थैंक यू फॉर बीइंग देयर।

जिंदगी में इतनी सारी सिचुएशंस, और कभी एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब आपको लगता है कि किसी को एडवाइस नहीं चाहिए, बस एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। किसी को लिफ्ट देना, किसी की बात को सुन लेना, किसी को इनकरेज कर देना, आपके लिए छोटी सी काइंडनेस किसी और के लिए बहुत बड़ी होप हो सकती है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, काइंडनेस

भाई हमारा जो ये म्यूजिक का कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, ये 100% जेन्युइन है। आप भी म्यूजिक वर्ल्ड में और हम भी। वैसे रिलेशनशिप्स को परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट लोग नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कभी सॉरी बोलना पड़े तो बोलिए, कभी ईगो को साइड में रखना पड़े तो रखें, और कभी कभी बस एक हग ही सारी आर्ग्यूमेंट्स का सोल्यूशन होता है। जो लोग आपके टफ टाइम्स में साथ खड़े होते हैं उनकी वैल्यू समझिए। लाइफ शॉर्ट सही, अननेसेसरी ग्रजेस कैरी ऑन करने के लिए नहीं बनी। दिल बड़ा रखिए, प्यार बांटिए और रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए।

डियर लिसनर्स, आज की रात का ये सफर धीरे धीरे अपने फाइनल सॉन्ग की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन याद रखिए, रात चाहे कितनी भी डार्क हो, मॉर्निंग जरूर आती है। अगर आज का दिन डिफिकल्ट था तो कल एक फ्रेश स्टार्ट आपका वेट कर रहा है। होप को कभी मत छोड़िए, क्योंकि होप ही है जो हमें कल के लिए एक्साइटेड रखती है। सो थैंक यू सो मच अपने वक्त के लिए। अपना ख्याल रखिए, स्माइल करते रहिए। गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, और RM2 पर जल्दी मुलाकात होती है। अभी के लिए नमस्कार।